आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव हुआ 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:49 हुए हैं, आरंभ होती

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: हम अक्सर जप और जाप की चर्चा किया करते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में मौलिक अंतर है। जप एक व्यक्तिगत क्रिया भाव है, लेकिन जाप एक सार्वभौमिक प्रक्रिया का सूत्र है जो प्रायः समूह में या फिर स्वयंभू रूपक से संपन्न होता है। यह आवश्यक नहीं है कि जप करते समय किसी फल की इच्छा मन में रहे, लेकिन जाप जब भी किया जाता है वो फल की अभिलाषा से ही किया जाता है। ईश्वर की जो वाणी है भगवद गीता में, उसके अनुसार जाप एक उचित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये अव्यवहारिक भी नहीं है। जप कल्याण के भाव से होता है, जबकि जाप में कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा होता है। ये स्वार्थ कितना ही श्रेष्ठ और पवित्र क्यों न हो, स्वार्थ तो बस स्वार्थ है। सकारात्मक स्वार्थ कभी कभी ईश्वर से भी मिला देता है, इसीलिए साधना से उपलब्धियां हासिल होती हैं। सकारात्मक स्वार्थ का तात्पर्य हितबद्ध साधना से लगाया जा सकता है। ये ठीक है कि निस्वार्थ प्रेम सदैव भक्ति का द्वार खोलता है, लेकिन यदि हम मोक्ष की चाहत रखते हैं तो वो भी एक स्वार्थ ही है। जप साधना का एक विनियोग है, जप भक्ति का सूत्र है, लेकिन जाप इससे बिल्कुल अलग है। स्मरण, ध्यान और नाम का उच्चारण ये जप के विशेष अंग हैं। इसमें सबसे सरल होता है नाम का जप करना। नाम की महिमा शास्त्रों, पुराणों और स्मृतियों में व्यक्त हुई है। अनेक मुनियों ने नाम के जप से परम पद पाया। देवर्षि नारद से बढ़कर इसका मर्म कौन जान सकता है, और वाल्मीकि की बात करें तो उनके बारे में जो दंत कथाएं प्रचलित हैं हम सब ने सुनी है। पहले एक डाकू जिसने बाद में अपने हिसाब से मरा मरा का जाप करके उल्टे में राम राम अभिव्यक्त हुआ और वो एक ज्ञानी व्यक्ति बना। सच्चे भाव सहित नाम जप का स्वतः अभीष्ट फल देने का महत्व होता है। संसार के जितने भी भय हैं, ताप हैं, कष्ट हैं, इससे दूर होते हैं। ये अखंड यज्ञ के समान प्रभावी होता है। इस समय कलिकाल चल रहा है तो जप एक सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन एक बात और भी है, आचरण धर्मानुकूल हो और शरीर शुद्ध रहे। नाम जप से पापों का नाश हो

0: सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब अंतःकरण में प्रायश्चित का भाव विद्यमान रहे। प्रभु पुकारने से दौड़े चले आते हैं, लेकिन इसमें भाव प्रधान है। द्रौपदी ने जब पुकारा, प्रभु उल्टे पांव आए, उन्होंने उनकी सहायता की, लेकिन वहां भाव था, समर्पण था कि अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हमारे पर जो कष्ट और संकट आया है इससे आप ही उबार सकते हैं। इस तरह का भाव तभी जप का लाभ होता है। सांसारिक चाह पूरी होना कोई कठिन काम नहीं है, यह अपने कौशल और श्रम से संपन्न हो सकता है, लेकिन जहां अलौकिक संपन्नता की बात आती है वहां नाम जप एक शक्ति का प्रवाह बनती है। इसीलिए नाम जप को लौकिक और पारलौकिक दोनों आयाम दिए जाते हैं। अपनी अंतः प्रेरणा को स्थिर करके नाम जप योग साधना द्वारा कोई भी साधारण मनुष्य जीवन में अभावों को दूर कर सकता है, खालीपन को भर सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है टमाटर की उन्नत खेती। जानकारी दे रही हैं सविता कुमारी।
2: आज कृषि चर्चा आप सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, टमाटर के उन्नत खेती कर निक आमदनी कर सके छी। कारण टमाटर के बाजार भाव बारहो मास बनल रहित अछि। टमाटर के हम सब प्रतिदिन सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, वो तरकारी में एकर उपयोग करैत छी। तरकारी में उपयोग कयला सँ एकर स्वाद बढ़ जाइत अछि, वो एकर रंग सेहो सुंदर भऽ जाइत अछि। टमाटर स्वास्थ्य के लेल सेहो लाभप्रद होइत अछि। पहिने टमाटर के उन्नत प्रभेद के चयन करबाक चाही। एकर उन्नत प्रभेद अछि अरका विकास, अरका अभेद, अरका आलोक, अरका अभिजीत, अरका सौरभ, अरका मेघाली, पूसा उपहार, पूसा रूबी, काशी शरद, काशी अनुपम। आ संकर किस्म में अछि अरका सम्राट, अरका अपेक्षा, अरका विशेष, पूसा दिव्या, अरका वरदान, अरका रक्षक, अरका अनन्या, राजश्री पंत इत्यादि। टमाटर के खेती हम सब वर्ष में 3 बेर करैत छी। बाग करबा के समय अगात जुलाई सँ अगस्त धरि, आ मुख्य फसल के सितंबर अक्टूबर में, आ गर्मा जनवरी फरवरी में रोपबाक बेर अछि। गाछ के अगात के अगस्त सितंबर में, मुख्य फसल के अक्टूबर नवंबर में, आ गर्मा फरवरी मार्च में। बीया के दर मुख्य फसल के वास्ते 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखबाक चाही, आ संकर प्रभेद के लेल 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगेबाक चाही। दूरी पर सेहो ध्यान राखब बड़ आवश्यक होइत अछि। स्नेही किसान भाई बहन लोकनि, डिटर्मिनेट प्रभेद के 60x45 सेंटीमीटर, आ इनडिटर्मिनेट प्रभेद के 60x50 सेंटीमीटर, आ संकर प्रभेद के 75x60 सेंटीमीटर रखबाक चाही। आ खाद और उर्वरक व्यवहार प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट 150 से 200 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम, पोटास 80 किलोग्राम रखबाक चाही। आ कमौनी निकौनी तो सेहो बड़ आवश्यक होइत अछि, तै आवश्यकता अनुसारे कमौनी निकौनी करैत रहबाक चाही, जाहि सँ कि अवांछित घास नहि होय। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, पटौनी सेहो बड़ महत्व रखैत अछि, तै बेर पर पटौनी करैत रहबाक चाही। गर्मी मास मे 6 से 8 दिन के अंतराल पर, आ जाड़ मास मे 10 से 15 दिन पर, आ बरखा के समय में जखन नमी के अभाव बुझबा में आवे तखन पटौनी करबाक चाही। फसल रोपला के बाद 25 से 30 दिनक बाद खेत में कमौनी निकौनी अवश्य कऽ लेबाक चाही। फसल लगेला के 40 से 50 दिन तक फसल के खर पात से मुक्त रखबाक चाही। आ उपज क्षमता जे एकर से 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होबाक अनुमान अछि। स्नेही किसान भाई लोकन,

0: 1% बोरिक अम्ल यूरिया के संग 20 लीटर पानि में 20 ग्राम बोरिक अम्ल 100 ग्राम यूरिया आ 20 मिलीलीटर टीपॉल के एक पुड़िया शैम्पू के घोल रोपाई के 10 दिन बाद ओ पुष्पन सँ पहिने हर 10 दिन के अंतराल पर 3 बेर पात पर छिड़काव कऽ देबाक चाही। संगहि 0.1% जिंक सल्फेट 20 लीटर पानि में 20 ग्राम जिंक सल्फेट आ 20 मिलीलीटर टीपॉल वा एक पुड़िया शैम्पू के घोल पुष्पन सँ पहिने 10 दिनक अंतराल पर से 10 बेर पात पर छिड़काव करबाक चाही। एहि संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
3: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों

0: की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं, आज डॉक्टर JK दास से गुर्दा रोग के विषय में हम बात करेंगे। गुर्दा यानी किडनी, तो ये गुर्दा है क्या या किडनी है क्या, और शरीर में ये कहाँ स्थित होती है?
3: मनुष्य के शरीर में दो किडनियाँ होती हैं जी, जो एब्डोमेन के पोस्टीरियर वॉल से सटे 11 और 12 रिब्स के रिलेशन में रहती, लेकिन कभी कभी जन्म जात एक ही किडनी पाई जाती। इससे मरीज को कोई परेशानी नहीं होती है और वह सामान्य जीवन व्यतीत करता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि अल्ट्रासाउंड में एक किडनी पाई गई तो मरीज बड़ा विचलित हो जाता है। तो मैं ये आपको कह देना चाहता हूँ कि वो एक सामान्य जीवन जी सकता है। तो एक किडनी अगर नहीं भी है तो चिंता की कोई बात नहीं होती है। ये किडनी जो है एक तरह का सेक्रेटरी एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। पेशाब का बनना किडनी में होता है और एवं इससे कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किडनी से कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी सहायक होते हैं।
2: यानी किडनी का डायरेक्ट संबंध ब्लड प्रेशर के रोग से
3: भी है जी। प्लस एक और भी चीज निकलता है इससे, एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर्स निकलता है जो ब्लड सेल्स बनने में सहायक होता है। इसलिए आप देखेंगे कि किडनी की बीमारी अगर किसी को है तो उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चलाना पड़ता है,
2: डायलिसिस
3: करना पड़ता है।
2: डॉक्टर साहब, आजकल देखते हैं कि किडनी की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है।
3: आज का मनुष्य मशीन पर ज्यादा निर्भर हो गया है, शारीरिक परिश्रम बहुत कम हो गया है, सिडेंट्री लाइफ मनुष्य आज लीड कर रहा है। यह एक कारण है। दूसरा कारण खान पान में मिलावट, मेरी समझ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किडनी बीमारी को फैला रहा है। कोई भी केमिकल किडनी के द्वारा ही फिल्ट्रेट होता है। मैंने आपको बताया कि किडनी में पेशाब बनता है
2: तो कोई एक तरह से पूरे शरीर का फिल्टर है।
3: जी हाँ जी, एकदम सही फरमाया, पूरे शरीर का वो फिल्टरिंग मशीन है। तो कोई भी चीज हम खाते हैं उसका फिल्ट्रेशन अल्टीमेटली किडनी से ही होता है। तो केमिकल जो है किडनी के द्वारा फिल्ट्रेट कर रहा है। आज ज्यादा पैदावार की होड़ में लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं,
2: केमिकल
3: किडनी प्रॉब्लम का मुख्य कारण ये है। और दूसरा है कि शुद्ध पेयजल का सर्वथा अभाव।
2: हमारा जो खान पान का जो

0: नियम है, जो हम पहले शुद्ध भोजन उपलब्ध था, शुद्ध जल उपलब्ध था और मिलावट नहीं थी,
1: नहीं थी,
0: तब किडनी पर उतना असर नहीं पड़ता था, किडनी अपना काम ढंग से करती थी। किडनी में जो रोग होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं?
1: सर्वप्रथम पानी में, शरीर में पानी का संग्रहण, माने पानी का जमना हो जाता है,
0: यानी जब शरीर में पानी जमना शुरू हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल,
1: बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले पैर का निचला हिस्सा अफेक्टेड होता है, उसके बाद आंखों के नीचे इडिमा हो जाता है, मतलब सूजन हो जाती है,
0: सूजन हो जाती है।
1: अगर चिकित्सा शुरू हो चुकी है तो आदमी यहीं तक लिमिट रहता है, और नहीं तो पूरे शरीर में उसका पानी जो है वो जम जाता है। दूसरा है कि पेशाब से खून का आना,
0: ये एकदम महत्वपूर्ण लक्षण,
1: बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। हिमेचूरिया, ऐसे हिमेचूरिया के अनेकों कारण हैं, लेकिन किडनी के बीमारी में भी पेशाब से खून आता है।
0: जी।
1: मैंने आपको पहले कहा कि किडनी जो है वो रेनिन सेक्रेट करता है, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है।
0: जी, जी।
1: अगर किडनी में बीमारी हो गई है
0: तो रेनिन सेक्रेट नहीं होगा,
1: ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।
0: जी, जी।
1: ये भी मुख्य लक्षण है।
0: जी।
1: इसमें जो है पेशाब का कम होना या ज्यादा होना, ये सब भी लक्षण इसके है।
0: जी, जी। अच्छा, किडनी के रोग की जाँच कैसे हो?
1: सर्वप्रथम हम लोग अगर किडनी से कोई पीड़ित मरीज आता है तो उसका जो है खून की जांच उसी की जाती है, जिसमें टोटल एंड डिफरेंशियल काउंट ऑफ WBC है, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है, एंड यूरिन में ही हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीरम क्रिएटिनिन करते हैं, ब्लड यूरिया करते हैं, उसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड की तरफ ध्यान देते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या चीज आ रहा है। मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी है, इंट्रावेनस पैलोग्राफी है। इन सब जांचों के द्वारा किडनी के रोग पर हम लोग पहुंच सकते हैं कि क्या कारण है, किडनी किस रोग से ग्रसित है।
0: जी। और डॉक्टर साहब, अंत में हम चाहेंगे कि रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, ये बताइए।
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सर्वप्रथम अपने श्रोता को कहना चाहूंगा कि आप शुद्ध पानी का सेवन कम से कम 5 से 7 लीटर अवश्य करें,
0: प्रतिदिन
1: करें। लोग ये कहता है कि पानी ज्यादा पीने से मुझे बीमारी हो जाएगी, नहीं, इस भ्रांतियों को अपने मन में निकालें। आज अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है कि वो बहुत कम जल का उपयोग
0: प्रयोग करते हैं।
1: इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शुद्ध पानी का सेवन जरूर करें, 5 से 7 लीटर। शुद्ध खाना, हल्का गर्म खाना खाने की आदत जरूर डालें।
0: डॉक्टर साहब, किडनी के रोग के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, हम सोचते हैं कि श्रोताओं को काफी लाभ हुआ होगा, तो स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देशगान। अब सुनिए भजन, स्वर है जुबिन नौटियाल का।

प्रदीप के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है महेंद्र कपूर का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है लता मंगेशकर का।

अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के ही। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है जुबिन नौटियाल का।

इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा।

रामचरितमानस का अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर।

0: सांधकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण मिथिला संध्या 5 बजे। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं शाम 6:10 से। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम काम घर का समय होता है 6:30 से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुना करते हैं संध्या 7 बजे। सात बजकर 52 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुना करते हैं रात 8:15 से। नौ 9:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 10 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत और एक बार फिर से फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 10:30 से। ये था आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्री मोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एंथनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तंभेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताश्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताश्रेलिया मुख्य कार्यकार्याधिकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रिय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणं क्रयणम् इत्यादिनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहु

0: पाक्षिक मञ्चेषु आतंकवादरोधि सहयोगं इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनं मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम् एकीकृतम् IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्यप्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण

मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और

0: चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले तीसरे मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोतागण के आजुक एहि अंक में हम प्रवीण कुमार झा हमरा संगे कल्याण कुमार झा दुनू आदमी शास्त्रे नमस्कार करै छी आ समस्त श्रोतागण के स्वागत करै छी आ संग संग अहूँ के स्वागत कल्याण भैया।
0: प्रवीण भैया आपको भी स्वागत है आज के इस नमस्कार मिथिला कार्यक्रम के इस नए अंक में और समस्त श्रोताओं को भी अभिनंदन वंदन और स्वागत।
1: सबसे पहले कार्यक्रम में शुभारंभ करी छे सब दिन हम सब एकटा सुंदर सन विचार संग ता आजुक विचार अछि।
0: आज का विचार हमने स्वामी विवेकानंद की उक्ति से लिया है, तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है।
1: उत्तम।
0: वास्तव में हमें अपने जीवन में अपने स्वभाव को इस तरह ढाल लेना चाहिए कि हम दूसरों के मददगार बने, गिरे हुए को उठाएं, दूसरे के रास्ता को अवरुद्ध न करें बल्कि उसे विकास के मार्ग की ओर ले जाएं। सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास, विकास ही जीवन की अंतिम सीमा है।
1: सत्य कहे छी, कोनो तरह सुविचार हमरा सबके और जीवन में सहायक होइत अछि। गुड रहस्य ओकर जे ई होइत अछि जीवन में एखने अहाँ कहलहुँ जे ई युक्त छनि, सचमुच पानि जे अछि तकर कोनो रंग नहि छै, जाहिमे मिला दियौ ओहने भऽ जाइए, लेकिन ओहिठाम पहाड़ छै

0: सर के रास्ता रोक लै छै, अवरुद्ध कऽ दै छै, लेकिन पानि अपन धारा बनाकर जीवन आगाँ लऽ कऽ चलि जाइ छै। तऽ पानिसँ हम की सीखी, जतऽ जाइ ओहने भऽ कऽ रहि जाइ, शांतचित रही, आओर हमरा बिना तऽ ककरो जीवन आगाँ बढ़िए नहि सकी। हम पानि छी, ई महत्व समझी, आओर ओ महत्व जहिया बुझि जेबै तहिया जीवन सरल भऽ जायत, लक्ष्य साधऽ पड़ै छै, नहि कि साधि कऽ अबै छै कोनो प्राप्ति के लेल। और जीवन सफल तखने होइ छै जे कोनो लक्ष्य के साधना लऽ कऽ चली आ ओकरा सफलता पूर्वक बिना कोनो विचलन के प्राप्त कर ली।
1: रास्ता जब यदि कोई मुसीबत आ जाए जीवन में, कहीं पर भी कभी भी अगर कोई अवरोध पैदा हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए, पानी की तरह बनकर खुद बखुद रास्ता निकालने की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। और अब कार्यक्रम में सुविचार के बाद श्रोताओं को अवगत करवाते हैं आज का दिन यानी 9 जुलाई इतिहास के आईने में क्या कुछ झलक दिखलाता है।
0: जी
1: तो प्रवीण जी, 2000 ईस्वी की बात करें तो फिजी में जॉर्ज स्पीड तथा सैन्य नेताओं के मध्य समझौता संपन्न हुआ था आज ही के दिन। 2001 ईस्वी में भारत द्वारा पाक सीमा पर 2 चौकियां स्थापित करने की घोषणा की गई। 2002 ईस्वी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का नाम बदलकर अफ्रीकन यूनियन किया गया।
0: जी
1: 2004 ईस्वी की बात करें तो एशियाई विकास बैंक ने आतंकवाद से लड़ने हेतु अपने 42 सदस्य देशों के लिए एक कोष बनाया। 2007 ईस्वी में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में ध्यातत्व कार्य हेतु ओट्टो स्कॉट रिसर्च पुरस्कार प्रदान किया गया। 2008 ईस्वी की बात करें तो ईरान ने लंबी एवं मध्यम दूरी तक प्रहार क्षमता वाले 9 प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया। आज के दिन कुछ महान हस्तियों के जन्म की बात करें तो 1925 ईस्वी में गुरुदत्त, जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक थे। 1938 में संजीव कुमार, ये भारतीय फिल्म अभिनेता थे। 1930 के बालाचंदर, 1930 में के बालाचंदर, ये भी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1900 ईस्वी में सत्यनारायण सिन्हा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता थे और संसदीय मामलों के मंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे। आज के दिन कुछ महान हस्तियों के निधन की बात करें तो सरदार अंजुम, जो भारत के प्रख्यात शायर एवं लेखक, उनका निधन 2015 में हुआ था आज ही के दिन। शेरी भोपाली, ये भी एक सुप्रसिद्ध शायर थे, इनका निधन 1991 में हुआ था।
0: इतिहास के किछ अंश परसों निक लागल, हर पल एकटा इतिहास बनैया, जे क्षण बीतैया ओटा इतिहास बनैया। तो आओ सब मिलकर हम सब अपन मनोबल के संग आगाँ बढ़ी और अपन अपन इतिहास लिखी और कार्यक्रम के आगाँ बढ़बैत। सबसे पहले हम सब सुनै छी, एहि सब के बाद एकटा मैथिली सुगम संगीत। तो आओ सुनै छी मैथिली गीत।

0: वाह, रही जोड़े बटोही हमर आंगन। अरविंद कुमार झा के स्वर में ये मधुर मैथिली सुगम संगीत हमने सुना। और श्रोताओं, अब समय हो चला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं प्रवीण कुमार झा।
1: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। दरभंगा जिला सकरी आ रैयाम चीनी मिल सब आप चलत, अहि हेतु सरकार मेगा प्रचार प्रसार में जुट गेल। किसान सब के कुसियारक खेती हेतु प्रेरित करबाक लेल आब चारिटा विभाग बिहार सरकार के अहि पर काज कऽ रहल अछि। ज्ञात हो कि एक जमाना छल जे ई सकरी आ रैयाम चीनी मिल के मिठास सौंसे भारतवर्ष में पसरैत छल और किसान के मुख्य आर्थिक आमदनी के जरिया सेहो कुसियारे छल। सनै सनै ई मिल सब बंद होइत गेल। किसान सब मायूस भ क बैस रहला और जे मिल में कर्मचारी छल ओ सेहो ऊपर देखैत रहला जे दिन नीक होयत। खैर जे किछु सुबह के भूलल यदि साँझ क आबि जाए तो बुझियो नीक बात। आब ई ज्ञात भ रहल अछि जे ई दुनू चीनी मिल शुभारम्भ होयत फेर सँ। तै किसान सब जागरूक हो और अपन मुख्य आमदनी जे कुसियार छल अहाँ के ओहि के प्रति फेर जागरूक भ कऽ कुसियारक खेती करू और अहि में जे चीनी मिल चलत तैसँ लाभ लियो। ई बिहार सरकार चारिटा विभाग आब गामे गामे पंचायते पंचायते जा किसान रैयतदार सबसँ ई निवेदन करता जे कुसियारक खेती बेसी सँ बेसी मात्रा में कऽ जे दुनू मिल शुरू होयत ओहि के पूर्ति करैत आ अपन आर्थिक आमदनी के ऊपर करैत। संगे संगे इहो मदद करता सरकार जे आब नव तरीका से संकर प्रभेद के संग यदि कुसियारक खेती अहाँ करै छी तऽ नीक मुनाफा आर आर्थिक आमदनी भ सकैत अछि। समस्तीपुर नव सेमेस्टर में प्रतिष्ठा हेतु नामांकन के बाद मनोविज्ञान विभाग द्वारा एकटा नव सेमेस्टर छात्र

0: छात्रा संघ समस्त छात्र छात्रा सबके इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। एहि मे नियमित वर्ग में उपस्थित भए अनुशासन सहित जीवन यापन रखबाक लेल छात्र छात्रा के प्रेरित कयल गेल। संगहि कहल गेल जे व्यक्तित्व और चरित्र निखार के लेल सबसे पहले तो अध्ययन अध्यापन में जुड़ि कऽ रुचिपूर्ण सँ अपन पठन पाठन करू और एहिठाम अयला के बाद जे ज्ञान भेटत से घर में बैसला से नहीं होइ छै। चाहे छात्र छात्रा के पहिल कर्तव्य छनि जे वर्ग संचालन में भाग लय अपन प्रश्न जे मन के छनि तकर निवारण ओ करैत महाविद्यालय में आबि कऽ। एक डेढ़ घंटा के पैघ वर्षा खुललक दरभंगा शहर के पोल, संगे संगे आरो ठाम कतौ भेल, कतौ रोड पर पानि लागल तो कतौ नाला भेल जाम, मूसलधार बारिश भेल, नाला के सफाई आ जल निकाल से व्यवस्था के पोल खोल कर राखि देलक। ज्ञात हो कि एहि संगे दरभंगा DMCH में सेहो जल जमाव भ गेल, जाहि मे मरीज व्याध सँ पीड़ित और ओकर परिजन संगे संगे जे ओकर उपचार करै छथिन चिकित्सक महोदय संग कर्मचारीगण सबके से बहुत कष्ट भ रहल छन ओत जाकर काज करो में। ऐ के निवारण सालों साल अहिना होत जल से ओ परिसर में भरी जाते पहले बारिश में, एकर निवारण शीघ्र हेबा चाहिए। एक साल में सर्टिफिकेट, दू साल में डिप्लोमा आ तीन साल में भेटत रेगुलर डिग्री और चार साल में ऑनर्स प्रतिष्ठा के प्रमाण पत्र भेटत। बीच में जो पढ़ाई छूट गेल तो उस साल खराब नहीं होयत, भेटत सर्टिफिकेट। बिहार राजीव भवन राज्य के विश्वविद्यालय सब में चार वर्षीय स्नातक UG पाठ्यक्रम नव जे भेल है ओय के लेल नव राहत दिलखिन है, छात्र छात्रा में एहि लऽ कऽ खुशी अछि। पढ़ाई के संग संग व्यक्तित्व निखार आवश्यक होइत अछि। शिक्षा के महत्व तखने होइत अछि जखन शिक्षक गुणी हुआत और हुनकर जे अंदर में छात्र छात्रा पढ़े छथिन हुनका में अनुशासन और सत्य के ज्ञान देथिन जे आबा वाला दिन में से देश के कर्णधार होइ छथिन। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन और वर्चुअल माध्यम के सम्पन्न विभिन्न मानक के समीक्षा भेल कैल। सिंहवाड़ा में बनत 8-9 PAC स्वास्थ्य सेवा के होयत विस्तार। किसान उच्च विद्यालय में MLC 9 कक्षा के उद्घाटन कैलन। एहि संग हालचाल संपन्न भेल। नमस्कार।
1: PM जय, अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवा कर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: श्रोताओं, विज्ञापन से पूर्व आप अवगत हो रहे थे सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल लेकर उपस्थित थे प्रवीण कुमार झा। और प्रवीण जी, क्यों न श्रोताओं को मौसम पूर्वानुमान से अवगत करा दिया जाए।
1: अवश्य अवश्य।
0: तो श्रोताओं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 8 से 12 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर 10 से 12 जुलाई के आसपास मेघ गर्जन, वज्रपात तथा तेज झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में ज्यादातर दिनों में आकाश में हल्के से मध्यम बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि 10 से 12 जुलाई के बीच घने बादल आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी

0: चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिले के अनेक स्थानों पर 11 से 12 जुलाई के बीच अच्छी वर्षा हो सकती है। अन्य जिलों में पूरे पूर्वानुमानित अवधि में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है, हल्की हल्की वर्षा हो सकती है, एक दो स्थान पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रोताओं, सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो सुबह में 80 से 85% तथा दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 45 से 50% के बीच रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में हवाएं मुख्यतः पूर्वी दिशा से 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। और प्रवीण भाई
1: जी,
0: जैसा कि वर्षा की बात हमने की,
1: हाँ, एखन मौसम में,
0: और मौसम में भी वर्षा का अनुमान लगाया गया है।
1: जी, लेकिन एखन जे कहो भाई जे अपना सब ठाम मानसून के वर्षा से शुरू हो चुकल अछि, और ए वर्षा में से देखल गेल जे अहां दू चारि दिन आगा केसो पूर्वानुमान केलहुँ हैं, एक मतलब किसान सबके मन आभर्षित हेतन, किया तऽ एकरे आस लग किसान ऊपर तकै छला है जे नीक वर्षा हुए तऽ ई जे हमर क्षेत्र अछि और एक क्षेत्र की पूरा भारत वर्षे से कृषि प्रधान।
0: वैसे तो प्रवीण भाई मानव जीवन ही आशा पर केंद्रित है, लेकिन उसमें भी अगर किसान की बात की जाए तो किसान का पूरा जीवन ही आशा पर केंद्रित रहता है।
1: जी जी,
0: और खास तौर से भारतीय किसान का जीवन, और भारतीय किसान में भी हमारे बिहार राज्य के जो किसान हैं उनका जीवन तो मुख्य रूप से आशा पर ही निर्भर करता है
1: कि
0: कब भगवान वर्षा देंगे और फसल सिंचित होगी, और नहीं तो फिर कोई देखने वाला नहीं।
1: किसानक यदि ज्योत यहाँ कहबे तो एकटा छे हरियर हरियर ओकर जे खेती के
0: बिल्कुल
1: फसल छे से लहलहाइत रहे तो ओई सब बेसी किसान के से अहाँ के आत्मा जे छे से क्यों प्रसन्न नहीं करे।
0: बिल्कुल, हरियाली और खुशहाली ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
1: जी,
0: हरियाली होगी तो खुशहाली भी होगी। फसल अगर हरे भरे खेत रहेंगे तो फसल उपजेंगे ही, यह एक उदाहरण है, यह एक नमूना है किसानों के लिए, एक आईना है कि जब खेतों में हरियाली छा गई है, हरे भरे कलशदार पौधे फसल अगर तैयार है खेत में और लहला रहे हैं तो अवश्य ही उपज अच्छी होगी।
1: और कल्याण भाई देखियो, यदि धरती पुत्र ककरो सबसे बेसी कहल जाए छे तो वो किसान जे छे तिनका कहल जाए छे।
0: नहीं, धरती पुत्र अगर कहा जाए तो किसान ही है, क्योंकि धरती को चीर करके उसमें
1: नव सृजन
0: करके, और देखिए और भी जीवन की जो भी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो बाद में है, लेकिन प्राथमिक सुविधा है भोजन।
1: जी,
0: हम एक मिनट के लिए कम कपड़े पहन के रह सकते हैं।
1: जी जी जी,
0: नहीं
1: जी,
0: बगैर आवास का भी रह सकते हैं, पेड़ों के नीचे भी अपना अपनी जान बचा सकते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन भोजन सबसे पहले जरूरी है।
1: जी, जी,
0: हाँ,
1: जी,
0: भोजन जी, नहीं होगी तो और किसी चीज की इच्छा
1: मूलभूत
0: कल्पना भी
1: जीवन के कल्पना कोनो जीव के भोजन आवश्यक होइ छै, एकटा ओकर जीवन में वो सबसे पैघ भोजन छै, सांस छै।
0: और उससे भी ऊपर की बात की जाए तो कहा गया है कि भोजन करके हम महीनों दिन जीवित रह सकते हैं,
1: हाँ,
0: लेकिन जल के बिना हम 2 से 4 दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जल, जीवन और हरियाली, यानी ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन है तभी जब जल है, और जल है तो हरियाली भी होगी ही
1: निश्चित रूप से। और ये वर्षा ऋतु में जब समय पर वर्षा भ जाइए तो प्रकृति ई सूचना दैत अछि जे हम नव सृजन में फेर लाग गेल छी, आओ हमर धरती पुत्र किसान सब आओ और हमरा में नव सृजन के लेल फिर हमर धरती के अहाँ चीरू और ओहि में नव सृजन के लेल लगाओ फसल जे हरियर रहत तो अहाँ के मोनो हरियर रहत। और कहल गेल छे जे बाढ़ि सँ जीवी आ रौदी सँ मोरी, पुरान लोकोक्ति सब फकरा में अबै छलै।
0: वास्तविक बात है कि
1: दाहे मोरी, रौदी, उल्टा कहा गेल, रौदिये मोरी आ दाहे जीवी। दाहे मतलब बेसी, तो अपना ओहिठाम तो क्षेत्रो अछि, जलकर क्षेत्र अछि, एहिठाम विभिन्न तरहक जे

0: हमर नदी सब छथि तऽ जखन ओ पूर्ण भरै छथि गदगद भऽ कऽ तऽ ओ से अपना से जनता जनार्दन के सेहो कष्ट दै छथिन कोशी कमला बलान और अवधारा समूह के नदी सब बागमती होय गंडक होय
1: मिथिला
0: कतेक नाम लिय
1: माछ मखान
0: तो ये ही क्षेत्र जे जलकर क्षेत्र छे
1: बिल्कुल
0: त एहि ठम के लेल उपयुक्त यह होय छे जे जने बेसी वर्षा होय ने कम वर्षा होय प्रकृति के जते जरूरत छे ओतबे वर्षा होय
1: बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का एक महत्वपूर्ण मंत्र है प्रवीण जी हरियाली से खुशहाली तक का सफर इसका सीधा अर्थ है कि प्रकृति का संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही मानव जीवन में आर्थिक समृद्धि कहिए शुद्ध वायु और बेहतर स्वास्थ्य कहिए यह सुनिश्चित करता है। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई जल जीवन हरियाली मिशन इस सफर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पहल का मुख्य नारा ही है जल जीवन और हरियाली तभी होगी खुशहाली। इसके कई प्रमुख लाभ और लक्ष्य हैं।
0: हाँ सत्य कहै छी जल संरक्षण के घटित फिजूल स्तर के सुहारा के लेल पोखरि आहार सँ पानि जकरा कहै छी या झील होय ओकर जीर्णोद्धार कयल जा रहल अछि। एहि मूड में छथि जल जीवन हरियाली लऽ कऽ बिहार सरकार और ओ चाहै छथि जे पैघ सँ पैघ स्तर पर गाछ वृक्ष लागै ओकरा सुरक्षित रहै लगनाइ महत्व नहि छै
1: बिल्कुल
0: लगा कऽ से निश्चित रूप सँ ककरो जवाबदेही देल जाए जे ई जे वृक्ष लाखो लाख खर्चा कऽ कऽ लगायल जा रहल अछि तकर संरक्षण केना होय तै बेसी
1: जवाबदेही वैसे कर्मचारी तौर पर तो देना आवश्यक है ही लेकिन हम आम नागरिकों या आम लोगों की भी यह जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अगर कहीं पर वृक्षारोपण सरकार के माध्यम से किया गया है तो हम गाहे बगाहे उसके संरक्षण के लिए तत्पर रहें जहां तक संभव।
0: निश्चित रूप से पंचायत स्तर पर होते तो पंचायत की जिम्मेदारी देल गेल अछि लेकिन यदि ओ पैघ बाट जे राज्य सरकार के छै या राष्ट्रीय सरकार के छै ओहि बाट के कात में जे लगैत अछि ओकर एकटा अथॉरिटी होइ छै जे ओ वृक्ष सबके देखभाल करैत अछि ओ गाछ सबके देखभाल करैत अछि और दोसर होइत अछि जे अहाँ जे निजी स्तर पर किसान जे छथि से अपन रकबा में से एहन एहन योजना लऽ कऽ अबै छथि जे आइ बड पैघ स्तर पर से वृक्षारोपण कऽ कऽ बहुतो किसान एहन एहन वृक्ष लगेला है पर्यावरण संग हुनकर भविष्य में आर्थिक आमदनी के से चारि कऽ देतनि मतलब जे लगेला है ओ कते पता ओकर कोनो सीमा नहि
1: छै
0: सबसे बेसी पेता जे हुनकर जो हरियर हरियर गाछ जीवन भरि देखाओत से हुनका मन के आनंदित आनंदित करत तै जल जीवन और हरियाली कहल गेल छै जीवन रे तो जलो आवश्यक छै और आवश्यकता इहो छै जे किसान सब के मन हरियाल रहन ओ कोना हेतन तो हरियर हरियर फसल संग तो आओ इ बारिश में अहूँ सब पैघ स्तर पर गाछ वृक्ष रोपि कऽ ओकरा हरियाली करू आ संग संग नवका फसल धानक रोपनी के समय आबि गेल अछि आ ओहि संगे यदि गीत ना सुनब तो और मन आनंद भऽ जाइ छै
1: बिल्कुल
0: तो गीतो सुनू आ रोपनी ओरियानक जोगारो में लागि जाओ।
1: ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र की बात जब हुई है तो गाँव पर ही आधारित यह फिल्मी गीत श्रोताओं को भी सुनवाते हैं और हम सब भी सुनकर आनंदित होते हैं
0: जी।

0: गुड़ी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। वास्तव में गांव का वातावरण, खास तौर से वर्षा ऋतु में जो गांव का वातावरण होता है प्रवीण जी,
1: जी
0: वास्तव में मन को मोह लेता है और मन करता रहता है कि इसी हरियाली में कहीं गुम हो जाएं और जीवन के मन के भाव को भी हरियाली से भर दें।
1: ओना जे मनुष्य है या जीव है, हरियाली सब के लिए होने आवश्यक छे। और कतो प्रकृति के यदि संग अहाँ रहे छी तो ओ जीवन सबसे नीक मानल गेल अछि, चाहे ओ सुदूर पहाड़ के पहाड़ी गांव होए या मैदानी भाग के जलकर एरिया होए। हाँ, ई बात जरूर छे जे बेसी वर्षा जे होइ छे, बाढ़ जहन अबै है तो थोड़े जलकर क्षेत्र के लोग के जीवन ग्रामीण स्तर पर कष्टमय भऽ जाइ छन्हि, उच्च स्थान पर शरण लेबऽ पड़ै छन्हि। बहुतो एखन क्षेत्र एहन अछि, खासकर आप
0: प्रकृति चीज ही ऐसी है, प्रकृति ने कई जी

0: जीवों को अपने गोद में पालन पोषण करती आ रही है सदियों से
1: जी,
0: और उन्हीं जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव है मनुष्य
1: जी,
0: और मनुष्य तभी तक मनुष्य रहता है जब तक वो प्रकृति से जुड़ा रहता है। प्रकृति से जैसे ही हम अलग हुए तो हम मानसिक और शारीरिक वैचारिक सभी रूप में हम अपने मानवता को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे ही हम अपने तथाकथित विकास में आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति से दूर चले जाते हैं। प्रकृति का दोहन करके हम अपने स्वार्थ की पूर्ति तो करते हैं लेकिन प्रकृति का विनाश हम करते जा रहे हैं, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता।
1: जी जी, एकरा कहै छै जागृति छे, ध्यान गेलै है, एहन बात नै छै। विश्व स्तर पर आदमी बैठकी कऽ रहल छथि एहि सबके लेल जे प्रकृति के असंतुलन जे भ रहल अछि ओहि की कारण, ओहि के कारण यह अछि जे अहाँ के जे बर्फ जमल अछि ग्लेशियर ओ कुछ समय मने से ढहि रहल अछि और पानि बढ़ि रहल अछि, कारण धरती के तापमान ऊपर भ रहल अछि कारण सबसँ। तो अंधाधुंध विकास के दौर में हम सब एतेक आत्मुग्ध भ गेल छी जे प्रकृति जे विकासक जननी कहल गेल छै ओकरा हम सब से दुराचार के भाव सब देखै छी कि हेतै 10-20 टा गाछे चलि जेतै ई तऽ महल बनि जेतै ने, ई सोच अइ, ई सोच के बदलऽ पड़त। प्रकृति तखने विकास के एकटा नीक टिकली लगतै आ जदि प्रकृति नहि रहत तऽ कोनो तरहक विकास कखन धूल धूसरित भऽ जायत क्यों नहीं कह सकै।
0: बिल्कुल, प्रकृति ही नहीं रहेगी तब तो जीवन की कल्पना ही नामुमकिन है।
1: और वो ओहिना होइए जे विज्ञान तो विकास केलक लेकिन आवा पर जमीने पर, कारण एखन आप देखू जे लगभग हर घर में हर हाथ में देख रहल छी जे वयस्क भ चुकल छथि एक ना ने एकटा से ओ स्मार्ट मोबाइल रखने छथि, ओ पूरा दुनिया हुनकर भ गेल छनि,
0: कर लो दुनिया मुट्ठी में।
1: आब वो दुनिया एहन भ गेल छनि जे आब वो 2 पाई होय 4 पाई होय 10 रुपया होय 20 रुपया होय हुनक कोशिश रहै छनि जे लेन देन हमसब ओही में करी तऽ नीक बात, ओना नीक बात छै सुरक्षित आर्थिक लेन देन सरकारक नजरी में रहैत अछि।
0: हाँ, और सुविधा भी हुई है। एक समय था प्रवीण भाई की एक मतलब अगर ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर खासतौर से हम जो बिहार के जो लोग हैं और बिहार की जो अर्थव्यवस्था है खासतौर से आम लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो तो बाहरी आमदनी पर टिकी हुई है
1: जी, जी।
0: बाहर लोग गए हैं, बाहर नौकरी पैसा किए हैं
1: जी, जी।
0: तो वहाँ से कुछ भेजते थे तो हम देखते थे कि एक समय था जब पोस्ट से डाक द्वारा पैसा भेजा जाता था, मनी ऑर्डर आता था या फिर बीमा कहते थे,
1: जीविका के साधन हुई थी अपना सबके।
0: तो उसमें हम देखते क्या थे कि एक तो कुछ शुल्क वहाँ भी जब लगाया जाता था पोस्ट ऑफिस में तो वहाँ पर तो सैकड़े के हिसाब से कुछ प्रतिशत बांधी गई थी तो वो देना ही पड़ता था, और यहाँ डाकिया जब पहुँचाने आते थे तो वो भी उस पर कुछ परसेंटेज बांध देते थे।
1: उनका बख्शीश है ना, कोई नियम नहीं चले होना 5%
0: नहीं, वो एक प्रकार से बख्शीश एक प्रकार से नियम बन गया था। हम ऐसा देखे हुए हैं कि गरीब व्यक्ति अगर किसी कोई परिवार गरीब है और उसको 500 रुपया आया तो उसको पैसा लेकर के भी उसको 50 रुपया देना पड़ता था उसमें से।
1: हाँ, तो इस सब जे व्यवस्था चल
0: तो से ये अगर इस व्यवस्था की तुलना आज की व्यवस्था से करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसानी हो गई है लोगों को।
1: सत्य कह,
0: अब मतलब हजारों हजार रुपया आप भेज सकते हैं। हाँ, और उस क्षण भर के अंदर
1: जी जी, जी
0: हाँ
1: जी।
0: लेकिन जितनी ही सुविधा बढ़ी है उतनी ही समस्या भी बढ़ी है।
1: हाँ, आब एलहुँ हाँ, असली बात पर। देखियो, सबसँ बेसी महत्व रखै छै एहि सबके लेल शिक्षा, कि हम अपन जनता जनार्दन के एहि हेतु पूर्ण शिक्षा दऽ देने छियनि डिजिटल के, कि ओकरा हम सीधे थोपि देलियै। हमरा लगैए जेना ग्रामीण स्तरमे एखन थोपनाइ जकाँ, ग्रामीण स्तरमे एखनो निश्चल छथि बहुतो आदमी जिनका एहि युगमे कखन के स्मार्ट ढङ्गसँ ठगि लेत से नहीं कह सकै छी, तै सचेत हो।
0: बिल्कुल, और इसके पीछे सचेत रहने के लिए कुछ जो तथ्य हैं उनको भी श्रोताओं को ये बताना आवश्यक होगा और हम लोग भी इस बात को समझ लें कि कभी भी डिजिटल लेन देन के समय जब हम किसी को अपने बैंकिंग ऐप से किसी को पैसे भेजते हैं तो उसका जो

0: जिस व्यक्ति को हम पैसा भेज रहे हैं उसका नाम प्रॉपर जब आपने नंबर डायल किया
1: जी,
0: तो
1: जी, जी.
0: उसका प्रॉपर नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
1: हाँ.
0: ये सबसे पहले कंफर्म हो ले,
1: हाँ.
0: सुनिश्चित हो ले,
1: हाँ.
0: और अगर QR कोड होता है,
1: हाँ.
0: यदि QR कोड को स्कैन करके हम पैसा भेजते हैं तो वहां पर भी QR कोड के स्कैन होने के बाद जब विवरण आता है
1: उसमें नाम आ,
0: तो उसमें जिस व्यक्ति को हम पैसा भेज रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है कि नहीं,
1: हाँ, हाँ,
0: इसका भी इसकी भी सुनिश्चितता आवश्यक है,
1: सटीक है,
0: हाँ. दूसरी बात रहे कि जो हमारा पासवर्ड है वो गोपनीय रखना चाहिए, किसी को भी चाहे वो कितना ही अपना परम मित्र क्यों ना हो, हाँ,
1: हाँ, हाँ.
0: किसी को भी अपना पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो स्नेही से स्नेही मित्र को भी कभी भी लोभ के वश में पड़ के वो आपके साथ दगा कर सकता है और आपके पासवर्ड का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है.
1: एकदम सत्य कहलो, आम हम अबैछ देखियो स्मार्ट युवक भ गेलै, तै मनुष्य के ज्ञानो स्मार्ट भ गेल छै, तै ठगो सब जे स्मार्ट बन गेल छै. आब एहि मे निश्चल निरीह जनता जे एखनो ग्रामीण स्तर मे छथि, कम पढ़ल लिखल छथि, हुनका सबके एखनो तक से स्मार्ट मोबाइल के डीलिंग या कंप्यूटर के या लैपटॉप के नहि अबै छनि ओते ढंग से. हुनकर लेन देन तो शौक से सीख लेला है, नैना नैना भुरका से हुनका सिखा देलकनि नवका जेनरेशन, तऽ हुनका सबके बेसी सतर्क रहऽ के, किया तऽ बाल बच्चा कमाइ छथिन हुनका खाता पर पैसा भेजते रहै छनि, ओ सब ग्रामीण स्तर मे जीवन जीवै छथि, हुनका सबके बेसी सतर्क एहि दुआरे रहबाक चाही जे देखल गेलै कोनो ने कोनो एहन केहन प्रकार से एहन तरह नम्बर सबके ऊपर कऽ कऽ. आब केओ वृद्ध छथि हुनका केओ कहै छनि जे अहाँके बाल बच्चा एतऽ ये फलान चलन झूठ फूस कऽ कऽ हुनका पेटी माँगि लै छनि घुमा फिरा कऽ, अहाँके थाना आबऽ पड़त, एना पर नहि आबऽ तऽ अहाँ ठीक छै अहाँ एना नम्बर दऽ दियौ, ओ सब तते ने हुलबुला दै छनि, तते ने माया जाल पसारि दै छनि जे आदमी ओ सब सज्जन बेचारा ओहि युगके ओ सब हुलबुला कऽ से ओ ओपीडी तोपीडी दऽ दै छथिन, जाहिसँ की होइ छनि क्षणो नहि लगै छनि हुनकर जे खाता छनि जे किछु धन रहै छनि से स्थिरसँ समेट लै छथिन.
0: यही यही हमें सचेत होना है ना कि कोई भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है अगर आपके ऊपर कोई मामला दर्ज ही है,
1: हाँ.
0: तो प्रशासन आपके घर तक पहुंचेगी,
1: हाँ.
0: या फिर डाक के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी, हाँ. लिखित रूप से,
1: हाँ,
0: हाँ. और ये इस तरह से फोन पर जो है सो हम फलाने थाने से बोल रहे हैं,
1: हाँ,
0: फलाना
1: हाँ,
0: लोग बोल रहे हैं, इस तरह से
1: हाँ,
0: जो है सो नहीं कहा जा सकता,
1: हाँ,
0: तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अगर इस तरह से कोई कॉल्स आते हैं,
1: हाँ,
0: तो ये निहायत ही गलत है और ये मतलब फेक है.
1: एकदम सत्य कहै छी, देखू कल्याण भाई फिर हम कहै छी जे पढ़ल लिखल जहन सो ठगा जाइए, विज्ञान जते चमत्कार केलक तऽ मनुष्य ठग के ब्रेनो ओते चमत्कार में चलै छै, जहन पढ़ल लिखल के झोला दऽ कऽ ठग लैत अछि तऽ एखनो हम पहिले कहै छी ग्रामीण जनता ओतेक स्मार्ट नहि भेलथि है जे ई विज्ञान के देन जे स्मार्टफोन होय लैपटॉप होय जे किछु बैंकिंग प्रणाली होय ऑनलाइन से करऽ में.
0: प्रवीण भाई, मनुष्य जो कुछ भी सीखता है यहीं पर आकर के सीखता है
1: जी,
0: जन्म लेते समय सब एक अज्ञान बालक होता है और इसी धरती पर आकर के जिस प्रकार की भी कोई जानकारी है कोई भी ज्ञान है वो इस धरती पर ही लेता है और यही एक ऐसी संपत्ति है
1: जी,
0: जो अपने साथ लोग लेकर के चला जाते. तो हमारा काम है कि हम लोगों को ठगा गए अलग बात है, ठगे जाते हैं अलग बात है, हमारा काम है सामाजिक रूप से भी हम प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व तो बनता है कि अगर हम किसी विषय में जानकारी हमें किसी विषय की है तो हम अपने आस पड़ोस वाले को या जो अनबूझ हैं उस विषय में उनको हम अपने तरीके से इस बात की जानकारी दे कि हाँ चचा, हाँ भैया, हाँ दादा, ये इस तरह से ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी कॉल्स आए तो उसको नहीं उठाना है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेसबुक के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से जो अभी संचार जो संदेश का जो जरिया है उस सब के माध्यम से कोई QR कोड भेज देता है, अब इसको स्कैन कर दीजिए आपको इतना रुपया मिल जाएगा, हाँ. तो इस सब पर भी हमें सतर्कता बरतनी है.
1: सत्य कहलूँ, एकदम सत्य, जहिना हम सब कहलूँ जे ये स्मार्ट क्रांति युग है, सबटा काज के आसानी तो भऽ गेलै है, लेकिन सुरक्षा ओतबे सचेत भऽ कऽ करऽ पड़त, नहि करब तऽ अदृश्य चोरवा सब अछि अहाँ पर नजर देने रहैत अछि, तैं ओहिसँ बचबाक हेतु जागरूक बनू और ओना गामे गाम पहाड़ पंचायत में लगभग आब सेवा केंद्र दऽ देल गेलैया ग्राहक सेवा केंद्र बैंक सब दिलक है।

0: तलक लेन देन उतहिए जाके करी आ कोनो तरह गुप्त जानकारी क्यों कहुना मान दिया चाहे चाहे तो फोन पर नहीं दी, या तो उनका बजा लिए या ना तो कहूँ कहाँ बजाबे छी हम ही अबे छी।
1: हाँ।
0: लेकिन वो जानकारी तनकारी कतबो झांसा दैत तो ओ जाल में नहीं फंसब, ने तो माछ फंसबो से पहले बोर बना कर छीट दे छे तो बड़का बड़का रोह बुआरी दौड़ का खोबे छे आ फंस जाए छे जाल में। तो अहाँ माछ नहीं बनब से हमरा आशा है। कार्यक्रम आब हमरा ई कहि रहल अछि जे गप सप तो फिर हेते, लेकिन आब एकटा किया ने सुनगर
1: संगीत की ओर जाने की आपकी इच्छा है प्रवीण जी, तो मेरी भी इच्छा जैसे प्रबल हो रही थी। चलिए आपने रास्ता अख्तियार कर दिया, तो चलते हैं फिल्म संगीत की ओर।

0: एहि सुंदर गीत संग आजुक अंक सँ हमरा सबके विदा भव के समय आबि गेल अछि, लेकिन ओहिसँ पहिले एकटा कहि दै छी, शहर के अंतर्गत दरभंगा शहर के अंतर्गत एखन बहुतो ठाम परीक्षा केंद्र परीक्षा सब चलैए और बारिश के कारण सँ यातायात व्यवस्था अवरुद्ध भ रहल अछि, तै समय से पहले निकली छात्र छात्रा सब अपन अपन केंद्र पर पहुंच जाए से निक, नहीं तो समय यदि छूट जाए तो परीक्षा छूट सकैत अछि। और समय कहैत अछि आब
1: कार्यक्रम के इस अंक से मुझे यानी कल्याण कुमार झा को और
0: प्रवीण कुमार के
1: दीजिए अनुमति। नमस्कार मिथिला।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत त खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत त हमरा लोकनि खायब की?
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी, आ हृदय सबके जोड़वा।

0: एल हम आब रहल छी एकै क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बन
3: अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्व

0: अपने साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा,

0: इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के

0: नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
1: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमेरिका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के

0: मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart

0: Fights the Pioneer. Financial Express quotes Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan under the headline, July rains 42% surplus, boost Kharif prospects. POK may see flashpoint today, return bodies of 56 martyrs, informs the Asian Age, adding the grim situation and civil rights violations in POK raised international condemnation and protests across the world. Centre intensifies preparedness as El Nino threat looms large, mentions the Statesman. ED freezes Trinamool's 400 crore rupees bank deposits under Prevention of Money Laundering Act, PMLA, informs the Tribune. And finally, a Times of India article titled Summer Push, Durables Eye Double-Digit Growth, informs a scorching summer has spurred demand for seasonal appliances, putting India's consumer durable sector on track to post a robust double-digit growth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममंसब एंथोनी अल्बनीज़ आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज़ फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हममंसब एंथोनी अल्बनीज़ के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मुफादात के तहफ्फुज के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। बेलकौमी मालियाती फंड की जानिब से इस साल के दौरान भारत की शरे तरक्की 7% रहने के तखमीने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्नब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हममंसब एंथोनी अल्बनीज़ के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज़ फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान

0: फसलों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज किया जा सकेगा। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असातिज़ा और उनके खानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असातिज़ा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फ़ायदा पहुँचेगा। असातिज़ा और उनके अहल खाना को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग में मुफाहमतनामे पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने असातिज़ा की सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अपने वादों को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के महकमे बुनियादी तालीम के मुलाजमीन के लिए ये जामे समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंश्योरेंस प्रोग्राम भारत में अपनी नौयत का पहला दाम है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को मुनक़िद किया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो इम्तिहान के लिए अलॉट किए गए शहर के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cisir.net.nta.nic.in से अपनी स्लिप डाउनलोड करें। बैन अल-अक़वामी मालियती फंड IMF की जानिब से रवां कैलेंडर साल के दौरान भारत की तरक्की की शरह 7% रहने के तखमीने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। IMF की फ्लैगशिप छमाही रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ने अगले कैलेंडर साल में भारत की मजमुई घरेलू पैदावार की शरह मोतदिल होकर 6.4% रहने का तखमीना लगाया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ज़ेली हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने आज दिन में साहली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान आज सुबह कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत बारिश हुई, जिससे शहरों में शहरियों का काफी राहत मिली। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए, जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी मौसर तौर से ख़त्म हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अब नए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ताज़ा हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी खबरदार किया कि अगर ईरान ने मजीद हमले जारी रखे तो वाशिंगटन और ज़्यादा सख्ती से जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी हमलों का सख्त जवाब देगा। भारत की अर्णव परकर ने 36 साल में विमंडल जूनियर 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। 18 साल पापरकर ने क्वार्टर फाइनल में महज 52 मिनट में जापान के रियो तबाता को 6-2, 6-1 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा सरकारी दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां

0: सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बहुत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार का निर्णय, पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। और मौसम विभाग का गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में आज अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट। भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान तथा किशनगंज जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को दी गई है। इस पर 31 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि प्रमुख शहरों के बीच परिवहन व्यवस्था को तेज करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
1: चार कॉरिडोर हैं, पटना गयाजी कॉरिडोर पहला है, दूसरा है पटना एयरपोर्ट बेगूसराय कॉरिडोर, तीसरा है पटना हाजीपुर से प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर कॉरिडोर और चौथा कॉरिडोर है पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर। तो ये चार कॉरिडोर के लिए रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की स्वीकृति दी गई है। अभी यह यूपी में कुछ शहरों को कनेक्ट करता है।
0: एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बेरोजगारी भत्ता यानी मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को 2026-27 से मार्च 2031 तक लागू रहने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके तहत वर्ष 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने की सहमति दी गई है।
1: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक विस्तारित करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 300 करोड़ रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने प्रदेश में दूध उत्पादकता के साथ ही गुणवत्ता सुधारने के लिए बल्क मिल्क कूलर, दूध मिलावट जांच मशीन और डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कंट्रोल यूनिट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य में 1000 से अधिक डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कंट्रोल यूनिट और 80 दूध मिलावट जांच मशीन लगाई जाएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के अंकेक्षण के लिए सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी के गठन की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देने और सरकार के खिलाफ साजिश की जांच के क्रम में की गई है। इस दौरान टीम ने कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 वर्षीय और 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल

0: सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने इस संबंध में यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में वर्ष 2018 से लागू चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CDCS के पुराने नियम समाप्त हो गए हैं। हालांकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इधर राज्यपाल ने अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से खुल जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षक मनपसंद विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज में पत्रकारों से कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने मनचाहा स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद दो चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में एक डॉक्टर निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, जबकि दूसरे डॉक्टर पर मरीज को जांच के लिए अपने निजी क्लिनिक भेजने का आरोप है।
1: मैं गया था LNJP, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, नहीं आए 3 बजे तक उनकी ड्यूटी। वो गया था 3 बजे तक, नहीं आए 2 बजे तक ही उन्हें जाना चाहिए था। फिर हमने उन्हें फोन भी किया तो वो अपना रीजन बताने लगे, तो उसमें मैं कार्यवाही कर रहा हूँ, वो अपना शो कॉज देंगे। और हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया अपने निजी क्लिनिक में कि वहाँ जाकर आप जाँच करा लीजिए, तो उन पे भी कार्यवाही करेंगे।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खाते में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। उत्तर बिहार में जहां अच्छी बारिश हो रही है, वहीं दक्षिण बिहार में कम बारिश के चलते उमस और गर्मी का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: राज्य के गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हुई।

शीर्ष स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक किशनगंज के चरघरिया में 178.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पार्टी मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के लिए कई निर्देश दिए हैं। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव और 74 प्रदेश सचिव मनोनीत किए गए हैं। विधान पार्षद नीरज कुमार को फिर से पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जबकि 9 अन्य व्यक्तियों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई महीने में लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। मई के अंत तक ऐसे ऋण बढ़कर लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि खुदरा ऋण में भी लगभग 19.5% की वृद्धि हुई है। वहीं कृषि और संबंधित क्षेत्रों को दिए गए ऋण में लगभग 18% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि की रफ्तार धीमी रही। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना आवश्यक होगा। इससे पहले तीसरे मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता के आगामी सत्र में बिहार अपने घरेलू मैच राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव जियाउल आरफीन ने बताया कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पुनर्निर्माण कार्य जारी रहने के कारण राजगीर मैचों की मेजबानी करेगा। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप कैलेंडर के अनुसार बिहार उत्तर प्रदेश के खिलाफ पहला मैच 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक और दूसरा मैच मौजूदा रणजी एलिट चैंपियन जम्मू कश्मीर के खिलाफ 17 जनवरी से 20 जनवरी तक खेलेगा, जबकि तीसरा मुकाबला 24 फरवरी से 27 फरवरी तक विदर्भ के खिलाफ खेला जाएगा। भोजपुर जिले के शाहपुर में कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों का बयान बतौर साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराया है। भरत तिवारी की मां, भाई समेत 3 लोगों के बयान अंकित कराए गए हैं। इधर न्यायिक आयोग ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 19 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, पिकअप वैन, मोबाइल और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। नवादा केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कन्हाई नगर स्थित राजकीयकृत इंटर विद्यालय परिसर में होगा। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि प्रथम चरण में कक्षा 1 से 5 तक पठन पाठन संचालित होगा। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने 13 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, पटना से सूबे के 4 शहरों में रैपिड रेल सेवा शुरू होगी। दैनिक जागरण ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े विवाद पर लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर संग्राम, हॉर्मुज में 3 जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका ने किया हमला। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार में 946 स्कूल बढ़े पर दाखिला 4,37,037 कम हुआ। प्रभात खबर ने लिखा है, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 3,035 शिक्षकों की जाएगी नौकरी, वेतन भी सूद समेत वसूला जाएगा। आज अखबार लिखता है, बिहार में 1,497 संदिग्ध फार्मासिस्टों का पंजीकरण रद्द। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है, 2027 में नीट परीक्षा 6 दिन चलेगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार का निर्णय, पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क

0: किया जाएगा। और मौसम विभाग का गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में आज अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट, भोजपुर बक्सर सारण सीवान तथा किशनगंज जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: से लेकर मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: सब दिन भर तुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

0: नंबर है 0627222481, मोबाइल नंबर है 9430029353।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आब रहल छी। एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।
3: है पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा

0: घर उतर गए दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गए।
1: शेर नगमा के तहत आप महजूज हो रहे थे गजल से, आवाज़ थी मेरी हसन और तरन्नुम नाज की और कलाम था मिर्ज़ा गालिब का। सामीन, हम जानते हैं कि हमारे समाज में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं और हर समाज में लोगों का मिजाज अलग अलग होता है, सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबकी तरजीहात भी अलग अलग होती है। ऐसे मुश्तरका समाज के अंदर ज़रूरी होता है कि आपस में हम आहंगी हो, यानी एक दूसरे के दरमियान मुआफ़क़त हो, और ये आपसी हम आहंगी किसी भी महज़ब और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। आपसी हम आहंगी से मुराद ये है कि लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत का

इस सफर में वो हर चीज को छूता है मगर कुछ भी उसका नहीं रहता। आखिरकार इंसान इसी जुस्तजू में मोह रहता है कि कोई ताबीर, कोई बेदारी उसे उस बेनाम सफर से आजाद करे, मगर शायद यही तलाश, यही उम्मीद, यही भटकना उसकी जिंदगी की असल कहानी है। वो चलता रहता है एक ऐसी राह पर जहां न ख्वाब बाकी रहते हैं न हकीकत, सिर्फ एक एहसास कि वो खुद अपने ही बनाए मनाजिर का मुसाफिर है। सलमान एक अजीब व गरीब फिक्र का इंसान था, अजीब इस माना में कि उसकी दुनिया दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लोग शोर मचाते, महफिलें जमाते, दुनियावी गुफ्तगू में उलझे रहते, लेकिन सलमान के लिए यह सब गोया शोरगुल का जंगल था जिससे बच निकलने को वो हमेशा बेकरार रहता। वो खामोश मिजाज था, कम बोलता और ज़्यादा सोचता। उसकी आंखों में बज़ाहिर सादगी थी मगर अगर कोई गहरी नज़र से देखता वो तो साफ महसूस करता कि वहाँ एक वसी कायनात आबाद है। वो कायनात जिसमें रंग ज़्यादा थे, खुशबुएं ज़्यादा थी और उम्मीदें ऐसी थीं जो कभी बुझती नहीं थी। बचपन ही से वो दूसरों से अलग दिखाई देता। स्कूल के दिनों में जब सब लड़के दोपहर के वक्फे में खेल के मैदान में दौड़ लगाते, चीखते हंसते ज़मीन पर लोटपोट होते, सलमान अक्सर किसी दरख्त के साए में बैठा हुआ होता। उसके हाथ में कभी किताब होती, कभी वो किसी नामालूम ख्याल में गुम आसमान की वसतों में ताक रहा होता। उस्ताद हैरत से उसके अंदर झांकते मगर न वो कुछ कहता न अपनी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करता। गोया उसे अपनी ही खामोशी में सुकून मिलता था। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसके ख्वाब थे। ख्वाब उसके लिए किसी खेल या वक्ती खुशी का ज़रिया नहीं थे बल्कि ज़िंदगी की असल कुव्वत थे। वो जागती आँखों से ख्वाब देखने का आदी था। कभी वो ख्वाब देखता कि वो एक हरे भरे बाग में है जहाँ फूलों की महक उसके दिल को खुशबू से भर देती है। कभी ख़ुद को एक पहाड़ी पर खड़ा पाता जहाँ नीचे पूरी वादी रोशनियों से जगमगा रही है। कभी परिंदों के साथ प्रवास करता, कभी समंदर की गहराई में उतर कर रंग बिरंगी मछलियों के दरमियान तैरता। उसके ख्वाब तस्वीरें नहीं थे बल्कि उसके वजूद का वो हिस्सा थे जो उसकी सांसों को मानवीयत बख्शता। उसको यकीन था कि ख्वाब महज ख्याली नहीं होते। वो कहता था अगर दिल की गहराई से कोई ख्वाब देखा जाए तो एक दिन हकीकत का रूप ज़रूर धारता है। उन ख्वाबों को संभाल कर रखता, उनसे क़ुव्वत लेता और इन्हीं में जीने का सहारा ढूंढता। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने बरसों में ढलते गए, मगर सलमान की आंखों की रोशनी मद्धम न हुई। वो अब भी हर दिन एक नया ख्वाब देखता और हर रात एक नई उम्मीद के साथ पलकें बंद करता। मगर ज़िंदगी हमेशा ख्वाबों के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन उसने महसूस किया जैसे फ़ज़ा में एक बेरहम आंधी चल पड़ी हो। वो ख्वाब जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से सींचा था बिखरते बादलों की तरह उड़ने लगे। अचानक उसने खुद को एक तारीख कुएं में गिरते पाया। लम्हे भर को चौंक उठा, संभलने की कोशिश की मगर अंधेरे ने उसका दम घोंट लिया। कुआं इतना गहरा था कि ऊपर आसमान की सिर्फ एक बारीक सी झलक दिखाई देती थी। दीवारें नम थीं, ठंडक हड्डियों में उतर रही थी और खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने दिल की धड़कन भी किसी अजनबी आवाज़ की तरह सुनाई देती। वहाँ बैठे बैठे उसके दिल में सवालात उठने लगे। क्या ये सब फ़कत ख्वाब थे? क्या ख्वाबों की ताबीर महज एक फरेब है? क्या मेरी सारी मेहनत, सारी चाहतें, सब उम्मीदें इसी अंधेरे में दफन होने के लिए थीं? वो कुएं की दीवारों को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता। नाखून टूट जाते, हाथ जख्मी होते, कई बार वो ऊपर जाने के करीब पहुंचता मगर अचानक फिसल कर नीचे आ गिरता। वो चीखता पुकारता मगर जवाब में सिर्फ अपनी आवाज़ की बाजगश्त सुनता। रफ्ता रफ्ता वो थक गया, जिसमें ढाल हो गया, रूह

हमने के दुश्मन बने जो दरमियां हैं ताक में। और मक्ता का शेर है,

0: हूँ अपने मस्कन खाशाक में है सुकून किसको मयसर। गर्दिश अफलाक में मिल चुके जाने ना अब तक कितने बंदे खाक में कितने।
1: कलाम शायर के तहत अपना कलाम पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद इसरार आलम। सामिन अब चलते हैं बज़्म मौसीकी की जानिब और बज़्म मौसीकी में पेश खिदमत है ये खूबसूरत सी गज़ल। आवाज़ है जगदीश सिंह और चित्रा सिंह की और उनके हमनवा विनोद सहगल और कलाम है मिर्ज़ा गालिब का।

सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खान गालिब का पता मिला।

0: तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, बहुत कुछ
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है।

आकाशवाणी का ही दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आशिकी से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का।

आकाश की फिल्म से ही अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल। गीत समीर की है और संगीत है नदीम श्रवणकर।

अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम और उदित नारायण। संगीत है जतिन ललित का और गीतकार हैं समीर।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन EIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। संगीत है जतिन ललित का और इस गीत को गीतबद्ध किया है समीर ने।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे लिया था हमने फिल्म सलामी से। संगीत था नदीम शरवण का और गीत समीर की। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम अपने रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म प्यार तो होना ही था से। आशा भोसले और उदित नारायण की आवाजों में गीत समीर का है और संगीत है जतिन ललित का।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आवाजें थी अनुराधा पटवाल और कुमार सानू की, गीत के बोल थे समीर के। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दामिनी से, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। संगीत नदीम शर्वन का है और गीत है समीर का।

कर्तव्य फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आवाजें सुखविंदर सिंह और साधना सरगम की थी, गीत के बोल थे समीर के और संगीत था दिलीप सेन समीर सेन का। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म राज से, उदित नारायण और अलका यग्निक के युगल स्वरों में। गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में है।

0: मिलेंगे 231.5 मीटर पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज की पहली सभा को आगे रखते हैं और सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में गायन।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। भीमसेन जोशी के स्वर में आप सुन रहे हैं गायन। आइए आगे सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में ही ये अगला गायन।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत है, फूल प्रकृति में घोराए लगत है, ऊर्जा आब वाला काल ले
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानी बुनी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ, प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारे, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग बुधवार रात
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

गीत टिपटी बरसा पानी, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म मोहरा से, और आवाजें थे उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया था, यानी संगीत निर्देशक थे विजू शाह। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में।
4: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
3: ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
4: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
3: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
4: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
4: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
3: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
4: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
3: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
4: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
3: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
4: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
3: बिल्कुल।
4: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
3: जी।
4: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
3: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
4: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
3: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
4: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन

0: कमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
0: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने

0: जरूरत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं। यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ
2: अरे धृताची।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए।

0: मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
1: अरे भाई, ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
0: जी,
1: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
0: पिताजी, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ाइयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
1: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
0: जी पिताजी।
1: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
0: ठीक है।
1: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है। कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
0: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
1: अरे प्रवाहन।
2: जी पिताजी।
1: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
2: वो पिताजी,
1: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
2: जी वो
1: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
2: पिताजी, हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
3: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
0: हाँ हाँ पिताजी।
2: और पिताजी, हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
3: हाँ।
2: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे। खेत बस तैयारी समझिए।
1: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
2: जी,
1: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
3: पर क्यों पिताजी?
1: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
3: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
0: जी पिताजी,
3: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
1: बहुत अच्छा।
3: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
2: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
3: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
1: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
3: जी पिताजी।
1: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
3: अच्छा पिताजी।
1: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
3: अच्छा
2: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
4: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
1: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
4: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
2: चल चल, बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
5: और क्या,
2: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
4: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
2: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
1: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
3: जी पिताजी।
1: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
2: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे?
3: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
2: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
3: हाँ।
2: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
1: हाँ ये तो है।
3: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: दौड़ाने वाला आया है।
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई।
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने? कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
2: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
1: अच्छा,
2: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
3: वाह, हाँ, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
3: चलो चलो।
4: अरे वाह,
3: अरे अरे

0: Nie, pakla!
1: अरे ये कोलाहल कैसा है?
2: छोड़ दो, छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो
3: क्या
1: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: हाँ, अच्छा हुआ, संकट

0: सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
1: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो
1: क्या
0: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
1: हाँ, अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
1: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
1: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
2: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

फिल्म जान तेरे नाम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और गीतकार थे समीर। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म इक्का राजा रानी से विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ में।

2.35 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में। तो श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है हमारे श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का। तो आइए मिलते हैं आपकी रेडियो सखी लालती से कार्यक्रम नारी संसार में।

नारी संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को लालती का प्यार भरा नमस्कार। प्यारी बहनों, आज हम उपस्थित हैं आपके साथ आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसमें हम जीवन में काम आने वाली कुछ बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, साथ ही फिल्म संगीत के माध्यम से मनोरंजन भी भरपूर करेंगे। तो बहनों, सदा की भांति आज भी हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि आज सबसे पहले जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है, परिवार में बचत की आदत को कैसे विकसित करें।

प्यारी बहनों, बचत केवल पैसा जमा करने का नाम ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जो परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाती है। आज के समय में बढ़ती महंगाई, अनिश्चित आय और आकस्मिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक परिवार के लिए बचत करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि बचत की आदत बचपन से ही विकसित की जाए तो परिवार का प्रत्येक सदस्य आर्थिक जिम्मेदारी को समझने लगता है। बहनों, बचत भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। बीमारी, शिक्षा, विवाह, घर बनाने या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में बचत किया हुआ धन परिवार के लिए सहारा बनता है। इसके अलावा बचत मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है, क्योंकि आर्थिक संकट आने पर परिवार को दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। बहनों, परिवार में बचत की आदत विकसित करने के लिए सर्वप्रथम परिवार का मासिक बजट तैयार करना चाहिए। आय और खर्च का सही लेखा जोखा करने से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण किया जा सकता है। श्रोताओं, परिवार के सभी सदस्यों को यह समझना चाहिए कि आवश्यक और अनावश्यक खर्च में क्या अंतर है। बच्चों में बचत की आदत डालने के लिए उन्हें गुल्लक या छोटा बचत खाता दिया जा सकता है। श्रोताओं, इससे छोटी छोटी बचत का महत्व समझ में आता है। माता पिता को स्वयं भी सादगीपूर्ण जीवन अपनाकर बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। श्रोता बहनों, बिजली, पानी, ईंधन और अन्य संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना भी बचत का ही एक रूप है। श्रोताओं, अनावश्यक खरीदारी से बचना, आकर्षक छूट या विज्ञापनों के प्रभाव में आकर खर्च न करना तथा आय का एक निश्चित भाग नियमित रूप से बचाना अच्छी आदतें हैं। श्रोताओं, परिवार के सभी सदस्यों को समय समय पर बचत के लक्ष्य तय करना चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत, यात्रा या भविष्य की अन्य योजनाएं। जब पूरा परिवार मिलकर लक्ष्य निर्धारित करता है तो बचत करना आसान और प्रेरणादायक हो जाता है। तो बहनों, बचत की आदत हर एक परिवार की आर्थिक मजबूती की आधारशिला है। यह केवल धन एकत्र करने की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि अनुशासन, दूरदर्शिता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य छोटी छोटी बचत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो भविष्य की बड़ी से बड़ी आर्थिक चुनौतियों को सामना किया जा सकता है। तो बहनों, आगे पुनः हम आपसे बातचीत करेंगे। आइए अब सुनते हैं प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोता बहनों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी संसार। नारी संसार में इस गाने के बाद आपको हम सुनवा रहे हैं छोटी मुलाकात आधारित वार्ता आरती जी से। तो आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी आरती। वर्तमान युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। आज हर व्यक्ति के पास फोन है, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों न हो, सबके पास स्मार्टफोन देखने को मिलता है। जी हाँ, इसके बिना तो दिन गुजारना शायद मुश्किल हो गया है। मैं आपको बता दूं कि मोबाइल फोन के बहुत सारे फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज के समय में सबके पास मोबाइल फोन होता है और मोबाइल में कई ऐसे ऐप होते हैं जिन्हें कनेक्ट करने पर किसी से भी आप बात कर सकते हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति से चैटिंग भी कर सकते हैं, वो भी आसानी से। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके लिए नेट पैक होना जरूरी है। बहना, एक खास बात मैं आपको बता देती हूँ कि मोबाइल फोन के कारण मानव शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे आंखों पर तनाव या कम दिखाई देना या सिर दर्द या फिर नींद की कमी हो सकती है। तो बहनों, ध्यान रखें, अपने आंखों का ख्याल रखें। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में तनाव, सूखापन और सर दर्द हो सकता है। मोबाइल फोन की लत से समय और पैसा दोनों की बर्बादी हो सकती है। तो बहनों, ध्यान रखें, महंगाई के इस युग में मोबाइल फोन के कारण फिजूल खर्च बढ़ गया है। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। इसे सीमित और उपयोगी कार्यों के लिए ही उपयोग करना चाहिए। बहनों, क्या आप जानते हैं कि बात करते समय मोबाइल फोन को कान से थोड़ा दूर रखें या स्पीकर फ्री करके आप बात कर सकते हैं, या फिर ईयरफोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही चार्जिंग करते समय सतर्क रहें। जी हाँ, फोन को चार्जिंग पर लगाकर गेम खेलने या कॉल करने से बचें, क्योंकि इससे फोन ज़्यादा गर्म हो सकता है, और रात में फोन को चार्जिंग पर लगाकर ना सोए। साथ ही याद रखें, हमेशा ओरिजिनल या अच्छी क्वालिटी के चार्जर का ही

उपयोग करें। श्रोता बहनों, वाहन चलाते समय फोन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बहनों, एक जरूरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि साइबर अपराध से बचें। ओटीपी या बैंक विवरण कभी भी किसी के साथ साझा ना करें और अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। साथ ही अज्ञात नंबरों से आए फोटो, वीडियो या ऑडियो डाउनलोड ना करें।

श्रोता बहनों, अभी आप छोटी मुलाकात आधारित वार्ता आरती जी से सुन रही थी, जिसका विषय था मोबाइल फोन से बरतें सावधानियां। हम आशा करते हैं कि इनसे आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। आइए पुनः हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। चर्चा का विषय है विभिन्न योजनाओं से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती महिलाएं। प्यारी बहनों, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। बहनों, आज स्वरोजगार, उद्यमिता, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता का नई मिसालें महिलाएं प्रस्तुत कर रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं प्रभावी साबित हुई हैं। श्रोता बहनों, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को बचत करने, छोटे ऋण प्राप्त करने और स्वरोजगार शुरू करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, कंप्यूटर प्रशिक्षण और अन्य रोजगार परक कौशल सिखाए जाते हैं। श्रोता बहनों, सरकार द्वारा महिलाओं को छोटे और मध्यम उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण एवं वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और डिजिटल लेन देन की जानकारी देकर उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्रोताओं, इन योजनाओं का परिणाम यह है कि महिलाएं आज केवल गृहिणी की भूमिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सफल उद्यमी, किसान, शिक्षिका, कारीगर और व्यवसायी के रूप में भी अपना पहचान बना रही है। श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के महिलाएं डेयरी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मसाला निर्माण, अगरबत्ती, पापड़, अचार तथा हस्तशिल्प जैसे कार्यों से अपनी आमदनी बढ़ा रही है। श्रोताओं, महिलाओं की आत्मनिर्भरता का लाभ केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को मिलता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं तो बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इससे परिवार की जीवन स्तर में सुधार होता है और समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलता है। श्रोता बहनों, आत्मनिर्भर महिला ही आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला है। विभिन्न सरकारी योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों, वित्तीय सहायता और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो बहनों, आगे पुनः हम आपसे बातचीत करेंगे। आइए अब चलते हैं संगीत की दुनिया में। लीजिए प्यारा सा फिल्म संगीत का आनंद।

Ich bin gut.

0: ईश्वर का अमूल्य वरदान कहा जाता है। सावन का महीना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी वरदान है। वर्षा ऋतु के कारण धरती हरियाली से भर जाती है, खेत खलिहान लहलहा उठता है और नदियाँ और तालाब जल से परिपूर्ण हो जाता है तथा वातावरण शुद्ध और मनोहारी बन जाती है। वहीं यह मौसम किसानों के लिए नई आशा और समृद्धि लेकर आता है। इस महीने में लोग व्रत उपवास दान
1: रुद्राभिषेक कांवड़ यात्रा और शिवालयों में जलाभिषेक जैसे धार्मिक कार्य करते हैं। तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपूर्ण हो रहा है। अब लालती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अपनी सखी लालती से कार्यक्रम नारी संसार में। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार बस कुछ ही देर में।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में

0: समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम में 23.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

दोपहर के 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना और दोपहर के 2:15 पर देश दुनिया की खबरें। दोपहर समाचार में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

आपसे कुछ ही देर में यानी दोपहर के 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दोपहर के 2 बजे आप हमारे पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार सुन सकते हैं और दोपहर के 2:05 पर आप सुनेंगे उर्दू खबरें हमारे पटना केंद्र से प्रसारित की जाएगी।

हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युवा वाणी। शाम 6:10 पर आप

हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप सुनेंगे हिप हॉप पर आधारित कार्यक्रम युवा वाणी। शाम 6:10 पर आप

शाम 6:30 पर हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों का कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण किया जाएगा। गांव घर में आज का अंक होगा स्वरोजगार। चर्चा का विषय है स्वरोजगार आज की आवश्यकता, और शाम के 7 बजे के करीब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। चर्चा का विषय होगा खरीफ

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तुम्हें समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

जिंदगी की यही रीत है हार के बाद भी जीत। गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर इंडिया से किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हीरो से लता मंगेशकर की आवाज में।

अलका याग्निक और कुमार शानू के गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म गीत से। आइए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से। अलका याग्निक और कुमार शानू की युगल आवाज में।

0: फिल्म कुछ कुछ होता है से लिए गए इस गीत को अभी आप सुन रहे हैं। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरी जंग से। एस जानकी और किशोर कुमार की आवाज में।
1: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap?

फिल्म फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अफसाना प्यार का से आशा भोसले और अमित कुमार की युगल आवाज में।

0: फिल्म संगीत का आनंद भी आप ले रहे थे हमारे आकाशवाणी के।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीमा सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में बिहार समेत सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में घुसपैठ, सीमा से जुड़े इलाकों में आबादी के पैटर्न में बदलाव, नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। IMF के अनुसार मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियों के चलते भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी बढ़त बनाए रखेगा। हालांकि अगले वर्ष 2027 में देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर घटकर 6.4% रहने का अनुमान है। IMF का कहना है कि इसके बावजूद भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना रहेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी समेत NDA के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चुनौती नहीं है। इधर राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मौके पर राजद समेत महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता मौजूद थे। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही रहती ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इधर विभाग ने शाम 5 बजे तक नालंदा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा और समस्तीपुर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो रहा है। इसके माध्यम से शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SO

भी जारी हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम सिवान में पदस्थापित उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड के पटना के तानापुर स्थित आवास समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कार चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परमालपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा जाने के चलते चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना क्षेत्र के बवनलई गांव से पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रुकन पार्लियामेंट शाम्भवी चौधरी समेत एनडीए के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। इधर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। मौके पर आरजेडी समेत अजीम इत्तेहाद की मुख्तलिफ हलीफ पार्टियों के लीडरान मौजूद थे। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। मानसून की फुआलियत से रियासत में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। इधर महकमा ने शाम 5 बजे तक नालंदा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा और समस्तीपुर जिले के कुछ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश की वार्निंग जारी की है। रियासत के सरकारी स्कूलों में मामूर असातजा के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो रहा है। इसके तवस्सुस से असातजा तबादले के लिए ऑनलाइन दरखास्त कर सकते हैं। वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि मेयारी तालीम के लिए हुकूमत ने तबादले की पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार SOP जारी हो चुका है। इक्तसादी जराइम इकाई की टीम सीवान में मामूर एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड के पटना के दानापुर वाके रहायशगाह समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मौसूला इत्तला के मुताबिक उनके मुंगेर और सीवान वाके ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। आमदनी से जायद इमलाक के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। गया जिले के बोधगया थाना इलाके के सिजुआ गांव के करीब एक कार और ट्रक के दरमियान तसादुम के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि कार ड्राइवर की हालत तश्वीशनाक बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना इलाके के तहत परमालपुर के करीब एक तेज रफ्तार ट्रक के बेकाबू होकर पुलिया से टकरा जाने के सबब ड्राइवर और खलासी की जाए वकू पर ही मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना इलाके के बब्बन लय गांव से पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के इल्जाम में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना इलाके से पुलिस ने एक स्मगलर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं रोजगार सूचना। श्रोताओं, रोजगार सूचना में आज लेखा परीक्षक और सहायक 2026, कुल पद 1829, आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026, अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार सूचना में आगे JKSSB 2026, कुल पद 130, आवेदन शुरू होने की तिथि है 22/6/2026, आवेदन की अंतिम तिथि है 21/7/2026, अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jksb.nic.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रोजगार सूचना में आगे SBI 2026 कुल पद 1500 आवेदन शुरू होने की तिथि 18/6/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 8/7/2026 रोजगार सूचना में आगे रेलवे RRB टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026 कुल पद 6557 आवेदन शुरू होने की तिथि है 30 जून 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 तक अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष हो और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष हो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए और 33 वर्ष टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 कुल पद 1829 आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026 न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पे जाके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। JKSSB 2026 कुल पद 130 आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 तक अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, रोजगार सूचना अब यहीं समाप्त होती है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में है।

रोजगार सूचना में आ गए कुल BOI बिहार बैंक ऑफ इंडिया में कुल पद 779। आवेदन शुरू होने की तिथि 30/6/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि है 20/7/2026। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष हो। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

0: हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत

0: लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
1: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन टी ट्वेंटी जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
2: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे हैं। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
3: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों

0: ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIRF और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल

0: रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी। परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
1: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

गाय कलाकार थे आशा भोसले, मोहम्मद अजीज, कुमार शानू, अमिता कृष्णमूर्ति, एस जानकी, शबीर कुमार। प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही

آکاشوانی دادم.

श्रोताओं, हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। यहीं समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना, चल सकता है ना ऐसा?
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग, वाह क्या बात है। उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पके पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने

0: एक छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी। जब वे मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देखरेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है। बहुत अच्छी यादें आपने साझा की है।
1: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें।
0: हाँ हाँ,
1: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है। डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हजार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए।
0: तो इसलिए हमें ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है
1: या आप कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
0: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताजा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैंक भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है।
1: आजकल तो बहुत अलग अलग डिजाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें, कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
0: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे बिल्कुल सही, आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए 10 रुपए देते थे। उन बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। धीरे धीरे जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी, दीपा, के उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
1: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप टिप सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया 2 रुपया 5

0: रुपए हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे, वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
1: बिल्कुल सही कहा, एक एक रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
0: और दीपा ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
1: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे
0: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे खिलौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था।
1: और देखो, हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
0: एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है, जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
1: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है। तो एक अंतराल के बाद हम
0: फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है,
1: तो सुनवाते हैं गीत।

0: हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपए लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें, और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए, यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती, और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली, कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
1: किस तरह की परवरिश
0: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचाकर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वह

0: जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है। तो
0: है।
1: पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
0: कैसे कर रहे हैं।
1: एक साथी ने है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे हैं।
0: बिल्कुल, देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती है कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भरकर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है, इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक अलग विषय जो कि विचारणीय है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली बात ही समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था और केवल भुनी हुई मूंगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था, ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है, जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करें, सोच समझ के उनसे वादा करना।
0: क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत सतर्क और सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
1: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि बचपन में माँ ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनसे, इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं, और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया, तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहनता हूं,

0: पहना था जब मैं 7 साल का था।
1: तो यानी सर्दी के जो मोटी कोट होते हैं
0: वो भी गर्मियों में
1: पहनना इस तरह के जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं,
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहां से क्या क्या चीजों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया लिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्योहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। ऐसी भी शरारत,
0: ऐसी भी शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप

0: घर के घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके
1: दे
0: दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे। मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें। भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें। वाइपर्स की जांच शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमे भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें। और सबसे जरूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
0: जी,
1: तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं।
0: तो अभी भी ये जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं, फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं, केयरलेस हो जाते हैं।
1: तो लापरवाही ना बरते। जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
0: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई जरूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की जरूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना।
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो जिंदगी है
0: जी। बिल्कुल।

0: और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या जिंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती
0: है। बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंभे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टॉयल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहां पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहां पता होता है कि रास्ते पर कहां गड्ढे हैं, कहां ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहां पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहां तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: और सखी सहेली सुनते रहिए, और अब हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्या छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: क्या हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गांव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गांव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डीडवाना और कुशावन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताए सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा बहुत बढ़िया, बारिश नहीं हो रही है
1: राजस्थान में? अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे, दक्षिण राजस्थान में तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया, ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह है।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी फसल वो अच्छी होती है।
0: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, ओके रहूंगी तेरी,
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है वीर भारती।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ ममता दीदी।
0: जी सत्यप्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका, इंदौर का क्या हाल है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है
0: जी।
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? हाँ। और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष,
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवा

0: निवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है। पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है, तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें। और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पे जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं और
1: बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: लेक सिटी उदयपुर कहा तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी, तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी इसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली है जोधपुर जैसलमेर, उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है?
1: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह।
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह, और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
1: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी हाँ,
1: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश जी मुझे फेवरेट सिंगर है, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के गाने?
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता
0: हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी, सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा,
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है। क्या बात है भाई
1: जी। बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें
0: जी जी
1: दीदी मैं।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, इला अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं मेरे।

0: सारे तूने किसको याद किया। ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा थ्योरिकली, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंश

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी।
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह आएगा ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ की कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी,
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हुई है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी,
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो, प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही है, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
0: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन

0: संतुलन होता है इस सबसे, वो हम सब के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एचएच बिहारी का और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: प्यार भरा नमस्कार,
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो, हेलो फरमाइश सुनने वाले हो, प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है बम्बई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना, तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं। त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है, कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना।
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है।
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो
0: हो ही जाता है बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए।
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है आसाम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
0: मतलब खूबसूरती का आलम है। तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए।
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ, ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए, ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा।
0: जी जी जी।
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी
0: बिल्कुल
1: देखने के लिए।

0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: त्रिपुरा का और मसूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या।
0: तो ये शक्तिपीठ है
1: बिल्कुल।
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू। वो नाम आपको पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी।
1: और तो, उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन। तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए तो।
1: जी जी।
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरो का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरू सुल्तानपुरी जी।
0: जी गीतकार,
1: संगीत तैयार किया है जी,
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड।
0: तो

0: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता को।
1: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
0: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। दो तीन दिन पहले तो बहुत गर्मी थी।
1: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी है तो इस समय क्या बाढ़ आई है, उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
0: नहीं नहीं अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
1: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
0: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
1: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
0: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
1: अरे वाह क्या बात।
0: तो सारनाथ में जैसा आप जान ही रहे हैं कि अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में।
1: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है। तो इनमें से आपको क्या शौक है, क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: अरे वाह क्या बात।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो।
1: तो गा के सुनाई गनवा।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
0: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा बदला, ए आर रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
1: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कुंडलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी जी, बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका घेरा रे बरेली के बाजार में।
0: और बरेली की और कोई खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम करते हैं मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े कुर्ते क्या बनाते हैं?
1: मैम जी हम सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, आए शेरवानी भी बना लेते हैं,

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही हम उपलब्ध हैं मोबाइल सेट पर भी न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम से।

दोस्तों नमस्कार, उपस्थित हो गए हैं आपके इस कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है तरुण कुसुम। बना रहेगा 5:40 तक हमारा और आपका साथ। सुनेंगे लोकगीत और गजलें। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस लोकगीत से जो कि देवी गीत है।

तो दोस्तों सुन रहे थे लोकगीत। आज जो गीत आपने सुने उनकी गायिका थी सरिता पराशर, प्रेरणा कुमारी, स्नेहा झा और कुमारी कल्याणी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं गज़लें।

तो दोस्तों आपने क्रमशः दो गज़लें सुनी और अब ये गज़ल हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

आप सुन रहे थे क्रमशः गुलाम अली, मिताली और चंदन दास की आवाज़ों में गज़लें। गज़लें थी मिर्ज़ा गालिब, ज़मीर काज़मी और नसीम रिफत की। इसी के साथ तरुण कुसुम का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अगले अंक में फिर हमारी दोस्तों आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा दोस्त सुन रहे थे कार्यक्रम तरुण कुसुम, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं नई फिल्मों के गाने।

आपने क्रमशः दो गाने सुने। पहला गाना था फिल्म नियत का, जिसे गाया था लतिका झा ने। शब्द रचना थी कौसर मुनीर की और संगीत मिक्की मैकलेनेरी का था। अब जो गाना अभी आपने सुना है वो समारा फिल्म का था, अभिक साहा ने गाया था। गीत लिखा हुआ था शेख तबरेज का और संगीतकार थे दीपक वारियर।

आप सुन रहे थे देवांजलि बी जोशी का गाया हुआ ये छिपकली फिल्म का गाना। इसे लिखा था सोहम मजूबदार ने और संगीत था मीमो का। यह है कार्यक्रम की अंतिम भेंट, इरशाद कामिल का लिखा हुआ गाना, संगीत प्रीतम का, आवाज़ अरिजीत सिंह की और फिल्म का नाम है डंकी।

फिल्म डंकी के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ क्षणों में समाचार होंगे।

0: कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिस्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि

0: नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। 6:25 पर मैथिली संवाद का प्रसारण होता है। 6:30 गांव घर कार्यक्रम के तहत आज होगा जागरूक गांव। इसके अंतर्गत सुनिएगा चर्चा स्वरोजगार आज की आवश्यकता पर। साथ ही लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।

सात बजे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में चर्चा होगी खरीफ अरहर की खेती, साथ ही मौसम संबंधी जानकारी और समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में भी बातें होंगी। 7:52 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का समय होगा 8:15 पर। रात 9:30 लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 10:00 हम आप तक पहुंचाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और रात 10:30 हम आप तक पहुंचाएंगे फिल्म संगीत। तो ये थे आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दरभंगा है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में क्रमशः कलाकार हैं कुंज बिहारी मिश्र, गौतम मिश्र और काशीनाथ झा किरण। पहले सुनिए कुंज बिहारी मिश्र का गाया ये विद्यापति गीत।

आप सुन रहे थे गौतम मिश्र के स्वर में विद्यापति गीत। यह है कार्यक्रम की अंतिम भेंट, काशीनाथ झा किरण का गाया हुआ विद्यापति गीत।

0: ये विद्यापति गीत। आज के इस कार्यक्रम में आपने क्रमशः कुंज बिहारी मिश्र, गौतम मिश्र और काशीनाथ झा किरण के गाए हुए विद्यापति गीत सुने। इसके साथ ही विद्यापति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। 6:25 होने को हैं। कुछ एक क्षणों में मैथिली संवाद प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कामिनी ठाकुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अवैध घुसपैठ, सीमा पार सँ मादक पदार्थ के तस्करी, ड्रोनक बढ़ैत खतरा, जनसांख्यिकी बदलाव आ सीमा सुरक्षा के आर बेसी सुदृढ़ बनेबाक आवश्यकता पर जोर देलनि अछि। श्री शाह आई नव दिल्ली में सीमावर्ती जिला सभक पुलिस अधीक्षक के वार्षिक सम्मेलन के संबोधित कऽ रहल छलाह। एहि सम्मेलन में बिहारक वरिष्ठ अधिकारी सहित सभ सीमावर्ती जिलाक पुलिस अधीक्षक लोकनि सेहो सम्मिलित भेलाह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रदेश में 1 करोड़ नव राशन कार्ड बनेबाक निर्देश देलनि अछि। मुख्यमंत्री विभागीय योजना सभक आ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लऽ कऽ आई पटना में केंद्रीय उपभोक्ता मामिला आ खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के संग समीक्षा बैसक कयलनि। बैसक में मुख्यमंत्री विभागीय योजना सभक लाभार्थी लोकनिक डेटाबेस तैयार करबाक आ राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करबाक लेल कहलनि अछि। केंद्रीय मंत्री बिहारक ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालनक सराहना कयलनि। श्री जोशी कहलनि जे बिहारक विकासक लेल आ जन कल्याणकारी योजना सभक प्रभावी क्रियान्वयन में केंद्र सरकार सब संभव सहयोग करैत रहत। बैसक के दरमियान बिहारक अक्षय ऊर्जा रोडमैप, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आ प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन के सेहो समीक्षा कयल गेल। बैसक में खाद्य आ उपभोक्ता मामिलाक मंत्री अशोक चौधरी, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार, विभिन्न विभागक वरिष्ठ अधिकारी तथा सब जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम सँ सम्मिलित भेला। बांकीपुर विधानसभा सीटक उपचुनाव के लेल भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार आई अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि। एहि अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा आ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलासक सांसद शाम्भवी चौधरी सहित एनडीए के कतेको वरिष्ठ नेता उपस्थित छलाह। नामांकनक बाद आयोजित चुनावी सभा के संबोधित करैत भाजपा के वरिष्ठ नेता आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवारक लेल कोनो चुनौती नहि अछि आ हुनक जीत सुनिश्चित अछि। चुनावी सभा के जदयूक वरिष्ठ नेता आ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा सेहो संबोधित कयलनि। बाद में पत्रकार लोकनि सँ गपशप में भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार अपन जीत के दावा करैत कहलनि जे हुनका कतौ सँ कोनो चुनौती नहि अछि। एम्हर राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता सेहो अपन नामांकन पत्र दाखिल कऽ देलनि अछि। एहि अवसर पर राजद सहित महागठबंधनक विभिन्न घटक दलक नेता लोकनि सेहो उपस्थित छलाह। श्रीमती गुप्ता पत्रकार लोकनि सँ गपशप में दावा कयलनि जे एहि उपचुनाव में हुनक जीत निश्चित अछि। उपचुनाव में जनसुराज पार्टीक प्रशांत किशोर 11 जुलाई के अपन नामांकन पर्चा दाखिल करताह। नामांकनक अंतिम तिथि 13 जुलाई धरि अछि, जखनकि प्रत्याशी 16 जुलाई धरि अपन नाम आपस लऽ सकैत छथि। प्रदेशक सरकारी विद्यालय सभ में कार्यरत शिक्षक लोकनिक बदली के लेल पोर्टल आइ सँ शुरू भऽ गेल अछि। एहि माध्यम सँ शिक्षक स्थानांतरणक लेल ऑनलाइन आवेदन कऽ सकैत छथि। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलनि जे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लेल सरकार स्थानांतरणक नीति बनौलक अछि। आर्थिक अपराध इकाई के टीम आमदनी सँ बेसी संपत्तिक मामिला में सिवान में पदस्थापित उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड के पटना, मुंगेर आ सिवान स्थित 6 ठिकाना सब पर छापामारी कयलक अछि। हमर संवाददाता जनौलनि जे जांच एजेंसी हुनक दानापुर स्थित आवास पर छापामारी कयलक। एकर अलावे मुंगेर आ सिवान स्थित ठिकाना सब पर सेहो छापामारी कयल गेल। सिवान में अंकेश गोंड के भाई मुकेश सँ सेहो जांच टीम पूछताछ कयलक अछि। उत्पाद निरीक्षक पर आमदनी सँ 200% बेसी लगभग 2,38,00,000 टाका के संपत्ति बनेबाक आरोप अछि। जदयूक कार्यकारी अध्यक्ष आ सांसद संजय कुमार झा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पत्रक माध्यम सँ दरभंगा स्थित मिथिला संस्कृत शोध संस्थान आ ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के मध्य संस्थागत सहयोगक समर्थन करबाक अनुरोध कयलनि अछि। पत्र में कहल गेल अछि जे एहि सहयोग सँ संस्थान में संरक्षित 1,000,000 दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपि के वैज्ञानिक

0: वैज्ञानिक सूचीकरण, डिजिटलीकरण, संरक्षण आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध तथा प्रकाशन के मार्ग प्रशस्त होयत। मॉनसूनक सक्रियता सँ प्रदेश मे लगातार वर्षा भऽ रहल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला 24 घंटा के दरमियान कटिहारक अहमदाबाद मे सबसँ बेसी 108.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल। विभाग काल्हि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण आ पश्चिमी चंपारण जिला मे किछु ठाम भारी वर्षा हेबाक चेतावनी जारी कयलक अछि। राज्यक आन जिला सभ मे सेहो वर्षा हेबाक संभावना अछि। मधुबनी जिलाक फुलपरास थाना क्षेत्र सँ पुलिस एक तस्कर के 13 किलो गांजा के संग गिरफ्तार कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गाम घर।

आजो गाम घरक दलान पर सब श्रोता लोकन के अनिल भाईक नमस्कार। संगे आई बृहस्पति दिन है, आजुक दिन गाम घरक दलान पर हम सब सुने छी कार्यक्रम जागरूक गाम। एहि कार्यक्रम में हम सब खास को विशेष को जागरूकता संदर्भ में गप करे छी। आई जे हम सब जाहि विषय पर चर्च करब ओ समस्या है रोजगार। प्राय बेसी घर में बेरोजगारी कोनो न कोनो रूप में निश्चित रूप से रहते अच्छा। एकर नीक विकल्प हो सकत स्वरोजगार। अपन सभक देशक जनसंख्या अबाध गति से बढ़ल जा रहल अच्छा। ओहि हिसाब से रोजगारक सृजन नहीं भ रहल है, ओना ई गप कोनो काल में संभव नहीं छल। एहि लेल किछ खास गप के एहि तरह कहल जा सकैत अछि। देखियौ, पहिने जे आवश्यक काज अछि ओहि काज के करू, फेर संभव काज करू, तऽ अचानक अपने देखब जे असंभव काज छल ओ अपने कऽ चुकलहुँ। ई कहब छनि संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के, आजादीक बाद अपन सभक देशक जनसंख्या चिंताजनक स्थिति से बढ़ रहल अछि। एहि स्थिति के कारण हमर सभक सामाजिक राजनीतिक एतय धरि कि हमर अहाँ के जे व्यक्तिगत जीवन अछि सेहो प्रभावित भ रहल अछि। संगे बहुत रास समस्या सब उत्पन्न भ रहल अछि। बेरोजगारीक समस्या हाल के वर्ष में आयल सब से बेसी गंभीर समस्या सब में से एक अछि। हालांकि सरकार सब एहि समस्या के कम करबाक प्रयास कऽ रहल अछि, मुदा एखनो एहि दिशा में प्रयास आवश्यक अछि जे नीक जकाँ कयल जाय। सरकारक दिस सँ बहुत रास कल्याणकारी योजना सब चलाओल जा रहल अछि, मुदा जनसंख्या वृद्धिक कारण ई समस्या स्वाभाविक रूप से विकराल भ रहल अछि। आइ अपन सभक देश विश्व में सबसे बेसी जनसंख्या वाला देश बन गेल अछि। एहि ग्रह पर हरेक व्यक्ति माने कह सकै छी, एहि ग्रह पर हरेक छठम व्यक्ति हम सब भारतीय छी। एहि समस्याक समाधान बड्ड बेसी सतर्कता सकांक्ष भऽ कऽ करब आवश्यक अछि। मुदा बहुत रास युवा लोकनिके मन में ई गप होइ छनि जे रोजगारक अर्थ ही ई होइए जे सरकारी सेवा। एहि मानसिकता सँ बाहर निकलब आवश्यक अछि। हमरा सब गोटे के ई गप के बुझ लेबाक चाही जे कोनो सरकार वा कोनो व्यवस्था संपूर्ण रूपे एहि समस्याक समाधान नहि कऽ सकैत अछि, अर्थात हमरा सब गोटे के रोजगार नहि दऽ सकैत अछि। सबसँ पहिने हमरा सब गोटे के ई गप बुझ पड़त जे एते

0: खूब सुंदर। एखन जे हमसब गीत सुन रहल छलहुँ, गीतक कलाकार कुंज बिहारी मिश्र, जेहने समय साँझक बेर छल तेहने भगवतीक सुंदरशन गीत हमसब सुनलहुँ। आब बेर भऽ चलल अइ सुनी हमसब प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। पर अब धीरे धीरे, खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब सब

0: समय पे डायग्नोसिस हो पाता है, जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
1: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
0: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामणि, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली NCR से भी पेशेंट आ रहे हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
0: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहां पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहां पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहां पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायना नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन है, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर OT है, ICUs में हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, मॉडलर ICUs हैं, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है, ऑफकोर्स, जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, ये सारी चीजों पर डॉक्टर रजत काल

0: से बातचीत चल रही है और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से 6206803040 6206803040 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है? क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
1: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयां जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
0: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें 6206803040 6206803040, ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
0: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: एखन हमसब प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान सुन रहा छो। श्रोता लोकन, बृहस्पति दिन जागरूक गाम कार्यक्रम में हमर सबक ये प्रयास रही है जे सामान्य जन लोक सबके जे समस्या रही है, जीवन में बहुत तरह समस्या हुई है, रोग व्याधिक समस्या हुई है, एकर अतिरिक्त बहुत तरह समस्या हुई

ओहि समस्या सभक निदान एहि कार्यक्रमके माध्यमसँ भऽ जाय तऽ हम आशा करै छी जे अपने जे एखन ई प्रायोजित कार्यक्रम सुनलहुँ निश्चित रूपसँ नीक लागल हैत आ बहुत एहनो गोटे हेता जिनकर समस्याक निदान एहि कार्यक्रमके माध्यमसँ भऽ गेल हैत। आब एहि सङ्ग आजुक जे जागरूक गाम कार्यक्रम अइ ओकर समय सम्पन्न हेबा पाए। खेती गृहस्थी कार्यक्रममे सभटा अन्नदाता बन्धु लोकनिके किसान भाई लोकनिके स्वागत सङ्गे अनिल भाइक नमस्कार। किसान भाई लोकनि भोजनमे दालिके बड्ड बेसी महत्वपूर्ण स्थान अइ। एहिसँ शरीरमे प्रोटीनके आपूर्ति होइए सङ्गे ओहिमे राहरिके दालि तऽ बड्ड बेसी स्वाद एकर नीक अपूर्व होइत अछि। आइ हमसभ एहन जे महत्वपूर्ण दालि अछि ओकर खेती नीक जकाँ कोना करी एहि सम्बन्धमे विस्तारसँ गप करब। किसान भाई लोकनि खरीफ राहरिके खेतीक लेल हल्लुक दोमट माटिवला खेत जाहिमे जल निकासक नीक व्यवस्था रहे सङ्गे पीएच मान उदासीनसँ हल्लुक क्षारीय वा अम्लीय रहे तऽ ओ नीक मानल जाइत अछि। राहरिके जे किछु उन्नत प्रभेद सब अछि ओ अछि बहार। ई प्रभेद नीक प्रभेद मानल जाइए। लगभग 260 सँ 265 दिनमे तैयार भऽ जाइत अछि। उपजाक सम्बन्धमे गप करी तऽ 25 सँ 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयरके दरसँ प्राप्त होइत अछि। खास कऽ उत्तर बिहारमे एकर शुद्ध फसिलके रूपमे एकर खेती कयल जाइत अछि। अपने ई प्रभेदके 1 जुलाईसँ 31 जुलाई धरि शुद्ध फसिलके रूपमे एकर खेती कऽ सकै छी। आन प्रभेद अछि पूसा 9। ई प्रभेद अपनेके 250 सँ 260 दिनमे तैयार भऽ जाइए। सम्पूर्ण बिहारक लेल ई प्रभेदके अनुशंसा कयल गेल अछि। किसान भाई लोकनि ई प्रभेद अपनेके 10 सँ 15 सितम्बर धरि सेहो लगा सकै छी, मतलब विलम्बसँ सेहो लगा सकै छी। राहरिके एकटा आन प्रभेद अछि नरेंद्र राहरि 1। ई प्रभेद कम समयमे अर्थात 235 सँ 245 दिनमे तैयार भऽ जाइत अछि। उपजा एहि प्रभेदके 20 सँ 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयरके दरसँ प्राप्त नीक जकाँ केलापर भऽ सकैत अछि। उत्तर बिहारक लेल ई प्रभेद नीक मानल जाइत अछि। ई प्रभेद बंझा रोगरोधी किस्म अछि। आन फसिल जकाँ राहरिके बाउग करऽसँ पहिने बीयाके निश्चित रूपसँ उपचारित करक चाही। राहरिके खेतीमे अपने बीयाके 20 सँ 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयरके दरसँ बीया लगैत अछि। बीजोपचारके लेल बाउगसँ 24 घंटा पहिने 1 ग्राम प्रति किलोग्रामके दरसँ फफूंदनाशक दवाई कार्बेंडाजिमसँ उपचारित करक चाही। सङ्गे किसान भाई लोकनि एहि गपके ध्यान राखल जाय जे राहरिके बीयाके बाउग करबासँ पहिने कीटनाशक दवाई क्लोरोपाइरीफॉस 8 मिलीग्रामके प्रति किलोग्रामके दरसँ उपचारित कऽ लेबाक चाही। रोपनीमे ध्यान राखी जे एक पाँतीसँ दोसर पाँतीक दूरी 60 सेंटीमीटर आ एक गाछसँ दोसर गाछक दूरी 20 सेंटीमीटर राखब उचित अछि। संगे किसान भाई लोकनि बाउग सँ पहिने खेत में जल निकास के उचित व्यवस्था अइ कि नहि एकर ध्यान निश्चित रूप सँ राखक चाही। जँ सब किछु नीक जकाँ अपने कऽ लेब तऽ उपजा नीक हेबाक संभावना अछि। लवणीय आ क्षारीय माटि मे राहरि के खेती संभव नहि अछि। जल निकासक पर्याप्त सुविधा हेबाक चाही। ढाल वाला खेत सबसे नीक मानल जाइए। पहिने एकरा 2-3 बेर जोताई कऽ कऽ ओकर बाद पाटा चला कऽ खेत के माटि के भुरभुरा बना देबाक चाही। अंतिम जोत काल में 5 टन सरल गोबरक खाद खेत में समान रूप सँ

छीटकऽ मिला देबाक चाही। तऽ किसान भाई लोकनि, गप करब हमसब, बहुत रास गप करके गीत नादक आनंद ली, सुनी ई सुंदर सन गीत।

खूब सुंदर जेहने समय धानक फसलक तैयारी भऽ रहल अछि, किसान भाई लागल छथि धानक खेती कोना करी, नीक जकाँ करी जे उपजा हुए, आ तेहने सुंदर सन ई गीत छल धान रोपनी वाला। अब खेती पथारी वाला काजक संग हम सब निश्चित रूप से पशुपालन वाला काज तक करबेटा करै छी। जेना हम अहाँ मौसम जलवायु कारण अनेक तरहक रोग व्याधि के शिकार होइ छी, मालजाल ठीक ओहिना हुनको पर प्रभाव पड़ैए, तो एहने विषय से संबंधित एकटा भेंट वार्ता सुनी। पशुओं के सामान्य रोग एवं उपचार भेंट वार्ताकार छथि

0: डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा हिनका संग गप कर रहल छथि अनिल कुमार कर्ण। त दुनू गोटे एक बीच जे गप भऽ रहल अछि हमहूँ सब ध्यान से सुनी। किसान भाई लोकनि आइ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत संगे नमस्कार। आइ बड़ खुशी के गप अछि आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित छथि सेवानिवृत्त क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन विभाग दरभंगा डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा। डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा जी अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करै छी संगे अपने के नमस्कार। आइ हम गप करब जे पशु सभक सामान्य रोग आ ओकर उपचार के संबंध में। ओइसे पहिने डॉक्टर साहब हम ई जानऽ चाहब अहाँ से जे स्वस्थ आ रोगी पशु के की लक्षण होइए, हम ई कोना बुझबै जे हमर जे खुट्टा पर माल अछि ई स्वस्थ अछि आ रोगी अछि, तऽ एहि संबंध में कहल जाय।
1: पशुपालक भाई,

0: पशु सभक सामान्य रोग आ ओकर उपचार के संबंध में। ओइसे पहिने डॉक्टर साहब हम ई जानना चाहब अहाँ से जे स्वस्थ आ रोगी पशु के की लक्षण होइए, हम ई कोना बुझबै जे हमर जे खुट्टा पर माल अछि ई स्वस्थ अछि आ रोगी अछि, तऽ एहि संबंध में कहल जाय।
1: पशुपालक भाई, आई अहाँ के पशुपालन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जे ज्ञानकारी अछि से दऽ रहल छी, भऽ सकैए ओ अहाँ लेल उपयोगी हुए, तैं अहाँ ओकरा ध्यानपूर्वक सुनब। सबसे पहिने तऽ अहाँ केना बुझबै जे पशु हमर बीमार यऽ कि स्वस्थ अछि, तऽ ओकर तीन चारिटा मूल लक्षण छै। पहिल, बीमार पशु सबसँ पहिने पागुर केनाइ छोड़ि देत, ओकरा थुथुन पर जे रहै छै पानि जकाँ ओ सूख जाइ छै, सङ्गहि ओकर कान जे छै से नीचा मुँहे भऽ जायत। आर बेसी जानबै तऽ ओकर अगर थर्मामीटरसँ अहाँ टेम्परेचर लऽ सकै छी तऽ टेम्परेचर ओकर हाई रहै छै, ओहो नहि देखबै तऽ ओकर साँसके लेबऽके प्रक्रिया तेज भऽ जाइ छै। ई सामान्य पशुमे भेलै। यदि दुधारू पशु अइ तऽ ओकरा अगर थनमे कोनो तरहके पीड़ा छै तऽ चलऽमे दिक्कत भऽ जेतै, दूध कमि जायत, आओर ओहिसँ बेसी कोनो बीमारी हेतै तऽ जेना पैखाना पतला भऽ जेतै, अरुचि भऽ जेतै, अपच भऽ जेतै, ईसब बीमार पशुके लक्षण भेलै। ओहिसँ जे परे भेल से स्वस्थ पशुके लक्षण भेल।
0: बेसी काल ई देखल जाइ छै जे स्वस्थ पशु जखन बैसैए तऽ शरीरके अगला भाग पहिने नीचा करैए, ओकर बाद पिछला भाग करैए, सम्भवतः ई गप छै।
1: अवश्य छै, ओही पर ओकर भारके संतुलन रहै छै, अगला आगा केलाके बाद पाछा केलासँ भार ओकर संतुलित भऽ जाइ छै, तैं ओ बैसैमे ओकरा आराम भेटै छै।
0: आ नीक आ स्वस्थ पशुके जे शरीरके जे चमड़ा होइ छै ओ बड्ड बेसी चमकदार आ मुलायम सेहो रहै छै।
1: जी जी,
0: आ रोगी पशुमे एकर सभक अभाव बुझना जाइ छै। तऽ आब हमसब ई गप करब जे अखन गर्मी अपन सने सने रूप देखा रहल अछि, प्रचण्डताक दिस गर्मी अपन बढ़ि रहल अछि। गर्मीक मासमे देखल जाइ छै जे मनुखके आ पशुके दुनूके लू लगै छै, तऽ एहि लूसँ लगऽके लेल नहि लागै, एकर बचावके लेल की सब करक चाही, आ जखन लू लागि जाय तखन की करक चाही?
1: गर्मी मासमे गर्मीसँ तऽ सब केओ प्रभावित रहै छथि। पशुके शरीरक एरिया नमहर होइ छै, ओहिसँ पानिके उत्सर्जन बेसी होइ छै, तैं सबसँ पहिने हुनका पानिके बेसी आवश्यकता पड़ै छनि। तैं पशुपालक भाइ बातके ध्यान राखथि कि पानिके हुनका कमी नहि होइ। जँ कोनो पशु गर्मीसँ आक्रांत भऽ गेलै, ओकरा भइए कि लूके असर अछि, तऽ ओ पशु सबसँ पहिने अपना आपके एकदम गुम सुम कऽ कऽ बैस जायत, मूड़ीके पेट पर मोड़ि कऽ राखि लेत, कोनो कोनो केसमे साँस अधिक चलऽ लागत, आ एकदम ओकर एक्टिविटी शरीरके जे छै से एकदम कमसँ कम भऽ जाइ छै, तऽ अहाँ समझि लिअ असर भऽ गेल। तत्काल ओकरा सबसँ पहिने तऽ साफ आओर स्वच्छ पानि दियौ, ओहिमे चीनी नमक मिला कऽ दियौ, ओहिसँ बेसी होय तऽ जँ दहीके पानि उपलब्ध होय घरमे अगल बगलमे तऽ दहीके पानि घोरि कऽ ओकरा पियाउ। ओहूसँ बेसी अखन आमके समय छै, टिकुला छै, ओकरा थकुचि कऽ ओकरा पका कऽ ओहिमे नून धऽ कऽ दियौ। ओहूसँ बेसी जँ जरूरी पड़े तऽ पशु चिकित्सकसँ सम्पर्क कऽ कऽ ओकर चिकित्सा कराउ।
0: निश्चित रूपसँ सम्पर्क करक चाही, जँ बुझना जाय कि अपनासँ संहारमे नहि भऽ रहल अछि तऽ योग्य पशु चिकित्सक लग जाकऽ ओकर उपचार करेबाक चाही। गर्मीक मासमे एहनो देखल जाइ छै डॉक्टर साहेब जे पाचन सम्बन्धी विकार मालजालके बेसी भऽ जाइ छै, अपच हुअ लगै छै, तऽ अपचके कारण की छै आ ओकर निदान की छै ई सन्दर्भमे कहल जाय?
1: आइ काल्हि चारागाह पर आश्रित रहैवला पशुके संख्या बहुत कमि गेलैए, ज्यादातर पशु खुट्टा पर बान्हि कऽ पोसैवला पोसै छथि, जाहिमे भुस्साके सङ्ग सङ्ग दानाके मात्रा दै छथिन। गर्मीके समयमे जे दाना ओ तैयार करै छथिन, यदि कोनो कारणसँ या हुनका जानकारीके अभावके चलते ओ बेसी देर राखल रहि जाइ छै तऽ ओहिमे फर्मेंटेशन शुरू भऽ जाइ छै, आ ओ जहाँ भुस्सामे मिला कऽ देबै तऽ ओकरा पेटमे गैस बनतै आ ओकरा ओ अपचके कारण भऽ जेतै। ताकि ओकर शरीरके एकटा पीएच होइ छै, जे एगो 6.8 to 7.2 होइ छै, ओहिसँ जखने ओ ऊपर बढ़तै कि नीचा बढ़तै, ज्यादा एसिड हेतै कि अल्कलाइन हेतै, बस ओहिसँ ओकरा पशुमे पाचन सम्बन्धी बीमारी हो लगतै। दोसर कारण, आइ काल्हि भुस्साके भी सेहो क्वालिटी अलग अलग किस्मके रहै छै, बहुत मीही अगर भुस्सा अहाँ दऽ देबै तऽ ओहूसँ ओकरा पाचन क्रियापर असर पड़ै छै। तेसर कारण, यदि

0: धोखा सँ कोनो पशु बाहर मे अय आओर कोनो गंदा नाला मे पानि एको दू घोट पी लेलक तऽ ओकरा ओ टॉक्सिसिटी ओकरा जहरीला असर ओकरा ऊपर कऽ दै छै आ ओहिसँ ओकरा प्रभावित भऽ जाइए पशु। चारिम कारण, धोखासँ कोनो फसल कतौ लागल अइ आ ओहिपर कोनो किसान ओकरा कीटनाशीके ऊपर प्रयोग केला हा जे अहाँके जानकारीमे नहि अइ आ ओ पशु एक दू मुट्ठी खा लेला तऽ ओहि अहाँके घर खुट्टा पर आबिते ओ अपन ढंगके एकटा नया सिम्टम ग्रहण करऽ लागत। तैं गर्मीमे एहि सब बातके अहाँ ध्यान राखी जे सबसँ पहिने तऽ ओकरा पानि स्वच्छ आ भरपूर मात्रामे दियौ आ ओकर बाद छायाके व्यवस्था करियौ,
1: माने छाहरिमे राखक चाही। गर्मीक मासमे बहुत रास उपद्रव मालजालमे होइए, अपच सम्बन्धी विकार तऽ हेबे करैए, सङ्गे पेट खराब जकरा दस्त सेहो कहल जाइए, तऽ पेट खराब सेहो मालजालके भऽ सकैए, तऽ एकर कारण की छै आ एकर निदान सामान्य रूपसँ की करक चाही से कहि दियौ।
0: जखने भोजनमे कोनो तरहके गड़बड़ी हेतै तऽ पेट ओकर पाचनपर असर पड़तै आ पाचन जखने सही नहि भेलै तऽ पेट खराब हेतै। तऽ पेट खराब दू तरह से भऽ सकै छै, एकटा खानामे कोनो तरहके गड़बड़ी भेलै ओहिसँ पेट खराब भऽ जेतै, या कोनो इन्फेक्शन ओकरा भोजनके माध्यमसँ ओकरा पेटमे चलि गेलै ओहिसँ खराबी हेतै। सामान्यतः यदि भोजनमे कोनो गड़बड़ी छै तऽ ओकर एकाएक पातर पतला पैखाना होइ छै, ओहि लेल कोनो एंटी डायरियल पाउडर है ओकरा माड़मे मिला कऽ दियौ, नून पानिके घोल दियौ, या कोनो सल्फा ड्रग्स या ओहिसँ आओर ऊपर होइ छै यूनिमाइसिन सल्फेट नियोमाइसिन ई सब दवाई जे छै से ओकरा बाजारसँ लाबि कऽ दियौ, जँ नहि कंट्रोल हुए तऽ पशु चिकित्सकसँ सम्पर्क करी।
1: बहुत सुन्दर जानकारी दऽ रहल छी डॉक्टर साहेब चंद्रभूषण मिश्रा जी। अपने एहनो देखल जाइ छै जे एक रोगके कारण बहुत रास रोग हुअ लगैए, जेना अपच भेलै, दस्तके शिकायत भेलै, एकर अतिरिक्त कखनो कखनो एहनो होइ छै मालजालके जे पेटमे बड्ड बेसी गैस भरि जाइ छै, अफरा भऽ जाइ छै, तऽ ओकर कारण की छै आ एहिसँ बचऽके लेल की उपाय करऽके चाही, आ जँ मानि लियौ एहि रोगसँ कोनो मालजाल ग्रसित भऽ गेल तऽ ओकर सामान्य उपचार।
0: भोजन जखने पाचन नहि हेतै, पेटमे अधिक देर तक रहतै तऽ मनुष्य अथी पशुके चारिटा पेट होइ छै, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। पहिला पेटके कैपेसिटी 40 लीटर तकके रहै छै, ओहिमे अगर बहुत देर भोजन रहि गेलै तऽ ओ तरह तरहके गैस बनेतै, मीथेन बनतै आओर तरहके गैस बनतै, जाहिके चलते ओकर पैखाना पातर भऽ जेतै, पैरसँ ओ लंगड़ा लागत चलऽमे, रोवा ओकर भुलक जेतै, मुँहसँ पानि आबऽ लगतै। ई सब सिम्टमके लेल अहाँ जेना पैखाना भेलै पातर भेलै तऽ ठीक छै ओकरा एंटीबायोटिक दवाइ दियौ, ओकरा कोनो पाचनवला जेना जाहिमे ईस्ट एक्सट्रैक्ट रहै छै, लैक्टोबैसिलस रहै छै, एहि टाइपके दवाइ दियौ। ओहूसँ नीक बफर आइकाल्हि भेटऽ लगलै बाजारमे, तऽ कोनो बफरके पानिमे घोरिकऽ दियौ ताकि अगर एसिड ओकरा पेटमे बहुत बढ़ि गेलै तऽ ओ न्यूट्रलाइज करतै, ओकरा बाद फेर ओ बहुत तुरत जल्दी भोजन नहि पकड़त तऽ ओकरा भोजनके सामान्य रूपमे लाबै लेल लीवर एक्सट्रैक्टके इंजेक्शन दियौ, बी कॉम्प्लेक्सके इंजेक्शन दियौ, आओर जल्दी दुधारू पशु चाहै छी जल्दी ओकरा हम नीक करी तऽ ओकरा कैल्शियम बोरोग्लुकोनेटके बोतल एक दू तीन बोतल तक चढ़वा सकै छी अहाँ। ई सब उपाय करबै तऽ पैखाना तऽ ठीक भैएटा जायत, ओकरा सङ्ग सङ्ग ओकरा जे से हुअवला जे क्षति अहाँके भऽ गेल, दूधमे कमी, भूखमे कमी, शरीरमे मुरझापन, ईसब दूर भऽ कऽ पशु अहाँके शीघ्र स्वस्थ भऽ जायत।
1: एहनो देखल जाइए जाहि मालजालसँ हमसब काज लै छियै, बरद भेल वा आन कोनो अइ, घेँटपर जे छै सूजन भऽ जाइ छै, फूलि जाइ छै, जकरा योक गल सेहो कहल जाइए। एहन रोगसँ जे कोनो काज करयवला मालजाल ग्रसित भऽ जाए तऽ एहि लेल की करयके चाही?
0: सबसँ पहिने देखियौ अपना शरीरमे भी कोनो ठाम अहाँके बेसी रगर लागत तऽ ओहिठमा अहाँके हाड़ एहन स्वेलिंग भऽ जायत, सूजन भऽ जायत, से हाल छै पशुओके। ओकरा कऽ कन्हा कान पर राखि कऽ अहाँ पालो या कोनो चीज, कोनो एहन भार वला चीज रखै छियै तऽ बराबर ओहिमे घर्षण पैदा होइ छै, जाहिसँ ओतऽके टिश्यू जे छै से ओ हार्ड भऽ जाइ छै आओर हार्ड भऽ कऽ ओ फूलि गेल, ओहिमे दर्द भेल, कड़ा भऽ गेल आओर ओ पशुके बहुत बहुत पीड़ा दै छै। तो ओकरा अहाँ कोशिश करू जे अखन शुरूएमे जखन सूजन भऽ गेलै तऽ ओकरा गरम पानिमे नमक डालि कऽ ओकरा सेकियौ, ओकरा आयोडेक्स लगबियौ, कैटगल वाइंटमेंट अबै छै ई लगबियौ, आर कोनो पेन किलर अबै छै ओ सब अहाँ पोरसाइल गोल्ड जी सब बहुत तरहके अबै छै पेन किलर ओकरा अहाँ लगा सकै छी।
1: एकर अतिरिक्त जिंक ऑक्साइड
0: बोरिक एसिड ई सबके लगा कऽ अहाँ
1: बेसलिन बना कऽ

0: पर लगा सके
1: लगा सके
0: वैसलीन तो अहुना लगावा के पड़ा चुके वो फाट जाए कोनो कोनो केस में।
1: अंत में डॉक्टर साहब हम पशुपालक भाई लोकन के लेल जाना चाहब जे माल जाल में अंत आ बाह्य परजीवी दुनू प्रकोप होइए तो सबसे पहिने अंत परजीवी आ बाह्य परजीवी दुनूक संदर्भ में ओकर कारण की होइए किया लगइए किया होइए आ एकर निदान की छे।
0: आइ के युग में पशुपालक भाई जो अहां अपना पशुधन सँ आर्थिक स्थिति नीक करय चाहै छी तो सबसे पहिने ओकरा बाह्य परजीवी के दूर करय के अहां के उपाय करय के पड़त। महीना में एक बेर चेक करियो कि ओकरा शरीर में कतौ जे छै से कोनो चमोकन त नहीं छै। बाह्य परजीवी उहे भेलै ओहिके चलते की होइ छै जे खून चूसै छै संगहि ओ जे चमड़ा में छेद कऽ दै छै ओहिके थ्रू भयानक भयानक बीमारी जेना थलेरियेसिस पायरोप्लाज्मोसिस एनाप्लाज्मोसिस और माने थले बहुत तरह के बीमारी ओहिके थ्रू होइ छै। ओहिके थ्रू अहाँके रेड वाटर के केस जे छै ओहो बबेसियेसिस ओहो होइ छै। तो अगर अहाँ एकटा टिक्स पर ओहिके लेल सरकारी अस्पताल में भी आइवरमेक्टिन और साइपरमेथ्रिन लगाबै वाला और आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन टैबलेट भी अबै छै अहाँ प्रयास करियौ जखन जाए तखन भले ही नहीं हुई उकरा बाद जाके कोशिश करू आ नहीं तो रेगुलर रूप से महीना में एक बेर अगर अहाँ बाह्य परजीवी के उपाय कह देवे साइपरमेथ्रिन या एमिथ्राज ये सब लगाबै वाला दवाई भेलै और ओकर टैबलेट खुआबै वाला अबै छै संगे आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन अबै छै ओहिमे पशु के भार के मुताबिक ओहिमे ओकर मात्रा तय कयल जाइ छै। तो ई अहाँ निश्चित रूप से अगर ई काज करै छी तऽ अहाँके पशुपालन में घाटा कहियो नहि होयत। अंतः परजीवी में लीवर फ्लूक इंटेस्टाइनल फ्लूक ब्लड फ्लूक और राउंड वर्म भेलै। जनरली छोट मवेशी में राउंड वर्म होइ छै जकरा एस्केरियसिस कहै छै ओकरा अहाँ एल्बेंडाजोल दियौ। अगर ई एरिया चूँकि बाढ़ग्रस्त छै ताहि लेल एहिमे लीवर फ्लूक के बेसी शिकायत रहै छै तैं ऑक्सी क्लोजानाइड लिभामिसोल के अहाँ टैबलेट इंजेक्शन ओकरा दऽ सकै छियै और टेप वर्म के लेल फेनबेंडाजोल के टैबलेट दियौ एहिसँ अहाँके बहुत आराम भेटत।
1: बहुत बहुत सुंदर नीक जानकारी चंद्रभूषण मिश्रा जी अपने के पशुपालक भाई लोकन के लेल नीक जानकारी दिलिए ताहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। पशु सभक सामान्य रोग आ उपचारक संदर्भ में हम सब एक भेंट वार्ता सुन रहा छलहुँ। भेंट वार्ताकार छला डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्रा हिनका संग गप कर रहा छला अनिल कुमार कर्ण तो दुनू गोटे के बीच जे गप भेल ताहिसँ नीक जानकारी भेटल। अब चलत चलत मौसम संबंधी सूचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मौसम संबंधी जे पूर्वानुमान 8-12 जुलाई धरि के प्राप्त भेल अछि ओ एहि तरह अछि। एहि अवधि में अधिकतम तापक्रम 34-37 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 24-28 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहबाक संभावना अछि। भिनसर में अपने के सापेक्ष आर्द्रता 80-85%, बेरू पर 40-50% धरि रहबाक संभावना अछि। एहि पूर्वानुमानित अवधि में बसात मुख्य रूप से पूर्वा बसात चलत 12-18 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चलवाक अनुमान अछि। एहि संग आब आजुक खेतीग्रस्ती कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पर अनिल भाई के चलवाक आज्ञा देल जाए। नमस्कार।

खेती गृहस्थी किसान भाइयों को संबोधित था। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शैक्षणिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
2: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
1: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: राज्य के 4 कॉरिडोर
4: और इस गीत के बाद
0: छाया की

0: AIR at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ राशन कार्ड बनाने के दिए निर्देश। किसानों के लिए 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। घुसपैठ रोकने के दिए सख्त निर्देश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के अभिषेक कुमार और राजद की रेखा गुप्ता ने दाखिल किया नामांकन। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आज पटना में केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार करने और राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की सराहना की। श्री जोशी ने कहा कि बिहार की विकास प्राथमिकताओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देती रहेगी। बैठक के दौरान बिहार के अक्षय ऊर्जा रोडमैप, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एग्रीकल्चर फीडर से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री अशोक चौधरी, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठ, सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रोन से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना आवश्यक है। श्री शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही श्री शाह ने जनसांख्यिकी बदलाव पर नजर रखने और घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण के लिए समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। सम्मेलन में बिहार सहित देश के सभी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार को कोई चुनौती नहीं है और उनकी जीत निश्चित है।
2: और तीसरा आपका, आपने यदि बंटी जी को एक एक वोट देकर जिताया तो आपका विधायक और उससे बंटी जी बन जाएगा। नितिन नवीन जी के अधूरे सपने और बंटी जी के कंधे पर वो भार किया गया है। एनडीए का एक एक कार्यकर्ता लगकर एक एक बूथ का एक एक घर तक जाकर अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी को जिताना है।
0: चुनावी सभा को जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी संबोधित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चुनौती नहीं है।
3: हमारे राजनीतिक गुरु थे, इनके साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मिला और इनके साथ बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत भरोसा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम किए हैं उस काम को आगे बढ़ाना है और उनके विश्वास पर खरा उतरना है। बांकीपुर की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे।
0: इधर राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा। मौके पर राजद समेत महागठबंधन

0: के विभिन्न घटक दलों के नेता मौजूद थे। श्रीमती गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि उपचुनाव में उनकी जीत तय है।
1: पातीपुर की जनता धोने का काम करेगी और यहीं से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा पातीपुर के साथ।
2: अभी तो उन्होंने तो जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया।
0: जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तक निर्धारित है, जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो गया है। इसके माध्यम से शिक्षक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पेयजल की समस्या वाले विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों की सूची 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई से संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब राजस्व न्यायालय में केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज और साक्ष्य ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही भौतिक रूप से कागजात जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली RCMS के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज और अतिरिक्त साक्ष्य ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। इसके लिए आवेदक बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर RCMS में लॉगिन करेंगे, संबंधित न्यायालय का चयन करेंगे और फाइल केस ऑनलाइन तथा एड केस रिकॉर्ड विकल्प के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने सभी दस्तावेज RCMS पोर्टल पर अपलोड करें, क्योंकि अब केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज ही मान्य होंगे। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
1: राज्य के उत्तरी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भाग कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
0: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत अरवल जिले के 20 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार ने बताया कि चयनित गांव में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, स्कूल, स्वच्छता और विद्युत आपूर्ति सहित सभी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन ने जिले के अनुसूचित जाति बहुल 21 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने

0: का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने बताया कि चिन्हित गांवों में 10 मानकों पर काम करते हुए अंतिम व्यक्ति तक सभी सरकारी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सिवान में पदस्थापित उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार कुंड के पटना, मुंगेर और सिवान स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जांच एजेंसी ने उसके दानापुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। सिवान में अंकेश कुंड के भाई से जांच टीम ने लंबी पूछताछ भी की है। उत्पाद निरीक्षक पर आय से 200% अधिक लगभग 2,38,00,000 रूपये की संपत्ति बनाने का आरोप है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग, एसएसपी और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र के धनैया गांव की है। आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई में लगी एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी और कई वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में वन विभाग के कई कर्मियों के घायल होने की सूचना है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भूटान के थिम्पू में आयोजित 16वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में पटना के आदित्य राज ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 75 किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कार चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परमालपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा जाने के कारण चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गया जिले के परैया थाना क्षेत्र में रोड रोलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना क्षेत्र के बबवन लई गांव में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। नवादा जिले के कादिरगंज बाजार में एक कपड़े की दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया है। पूर्णिया में आज जिला स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विकास संबंधी तथ्यों तथा विभागीय आंकड़ों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने अधिकारियों को जिले के इतिहास, धरोहर स्थलों और अद्यतन आंकड़ों को शामिल कर तथ्यपरक और त्रुटि रहित गजेटियर तैयार करने के निर्देश दिए। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने जून महीने की रैंकिंग में राज्य भर में पहला स्थान हासिल किया है। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ राशन कार्ड बनाने के दिए निर्देश। किसानों के लिए 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। घुसपैठ रोकने के दिए सख्त निर्देश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के अभिषेक कुमार और राजद की रेखा गुप्ता ने दाखिल किया नामांकन। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Waves OTT app now and watch for free.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
1: पश्चिम चंपारण जिले में मानसून का असर दिखने लगा है। पिछले तीन दिनों से जिले में लगातार बारिश जारी है। बारिश के बाद किसानों ने खेतों में तैयार धान के बिचड़े से रोपनी शुरू कर दी है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी फाटक आंशिक रूप से खोल दिए गए हैं। इससे नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज गंडक नदी में 88,300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बीते दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग की 3 सदस्यीय जांच टीम बेतिया पहुंची। संयुक्त सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में टीम ने नगर निगम के कनीय अभियंता सुजय सुमन पर लगे आरोपों की जांच की। करीब 4 घंटे तक अभिलेखों और फाइलों की जांच की गई तथा संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई। यह जांच उप महापौर गायत्री देवी की शिकायत के आधार पर की जा रही है, जिसमें कनीय बहाली और वित्तीय अनियमितताओं समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इधर बेतिया अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर तैनात कलर राजकुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। श्री मिश्रा पर जमीन की जमाबंदी अनलॉक करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। निगरानी विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के योगापट्टी प्रखंड के सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने रिदमिक पेयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और बिहार का नाम रोशन किया है। गौरतलब हो कि इस प्रतियोगिता में 78 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जिले के नरकटियागंज प्रखंड के सोमगढ़ पंचायत निवासी प्रगतिशील किसान आनंद सिंह अपनी एकीकृत खेती के मॉडल को लेकर चर्चा में हैं। वे मत्स्य पालक, जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों से बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं, साथ ही करीब 25 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आनंद सिंह ने बताया कि बायो प्लॉग तकनीक और जैविक खेती से कम लागत में अधिक उत्पादन संभव है। उनका यह मॉडल दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है। जिले में बीते दिनों जिला बिसूत्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने अधिकारियों को योजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम कर पश्चिम चंपारण को विकास के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाने पर जोर दिया। इधर जिले के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आवास, राशन कार्ड, नल जल, शौचालय, नली गली समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े समस्याएं रखी। नरकटियागंज प्रखंड के हरसरी पुरैनिया पंचायत में आयोजित शिविर में केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी शामिल हुए। उन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। इधर जिले में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पंचायतों में विकास कार्य तेज किए गए हैं। सड़क निर्माण, मिट्टीकरण, पौधारोपण समेत अन्य योजनाओं में बड़ी संख्या में मजदूर को रोजगार मिला है। उप विकास आयुक्त काजदे वैभव नितिन ने बताया कि जिले के 318 पंचायतों में 51,000 से अधिक श्रमिक विकास कार्यों में लगे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन प्रखंड में पशुपालन विभाग की ओर से अनुदानित दर पर बीते दिनों ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां का वितरण किया गया। जिला

0: पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र कुमार रवि ने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। लाभुकों का चयन ऑनलाइन आवेदन के आधार पर किया गया। बीते दिनों वाल्मीकि नगर के बेलवा घाट स्थित संगम तट पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर 156वीं नारायणी गंडकी महाआरती का आयोजन हुआ। भारत और नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में भागीदारी निभाई। बेतिया में भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के सचेतक और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ पश्चिम चंपारण के बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में मुहर्रम का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पर्व को लेकर बेतिया और बगहा पुलिस जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठकें आयोजित कर लोगों से आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई।
1: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
2: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये पहला गाना है आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों का गाया हुआ, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने। संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बरसात की रात।

आप सुन रहे थे आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों को, फिल्म थी बरसात की रात। अगला गाना पीएल संतोषी का लिखा हुआ है, संगीतकार सी रामचंद्र, आवाज़ लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है निराला।

और यह है इस कार्यक्रम की अंतिम भेंट, फिल्म किनारा का ये नगमा। युगल स्वर है लता मंगेशकर और भूपेंद्र का, शब्द रचना गुलजार की और संगीत आर डी बर्मन का है।

लता मंगेशकर और भूपिंदर को आप सुन रहे थे, फिल्म थी किनारा। गीत लिखा हुआ था गुलजार का और संगीतकार थे आरडी बर्मन। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको बता दें, रात 9:30 बजे और फिर 10:30 बजे भी आप सुन सकेंगे आज फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

साहित्यकार लोकनि महान विद्वान लोकनि के लेखनी से मिथिलाक इतिहास बड समृद्ध रहल अछि। प्राचीन कालहि से अखन धरिक अगण्य रचना एकर साक्ष्य अछि। एहि माटि के नमन जतौ औजके दिन 1909 ईस्वी में प्रख्यात भाषाविद के जन्म दिलक अछि सुभद्र झा, जे हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन समेत 14 भाषाक अद्भुत ज्ञाता 9 जुलाई के मधुबनी जिलाक नागदह गाम में जिनक जन्म भेल। हिनक पिता ज्योतिर्विद कुंजी झा छला आ माता निर्णा देवी छली। सुभद्र झाक अध्ययनारम्भ गामेक गुरु पंडित बलदेव झा सँ भेल। बाल्यावस्थाक दोसर गुरु छला छेदीलाल। हिनक पिता संस्कृतक अमरकोशक किछ पर्व, प्रायः आदि पर्व भोरे भोर उछावने पर कंठस्थ करा देने छलखिन। संस्कृतक श्लोक सबसे हो भोरे भोर हिनका रटाबैत। गामक पाठशालाक बाद सुभद्र झा मिडिल स्कूल रहिका सँ मिडिल पास कैलनि। 1923 ईस्वी में ओ वॉटसन स्कूल मधुबनी में नाम लिखौलन आ ओते से मैट्रिक परीक्षा पास कैलन। विज्ञान पढ़वा लेल गाम से ओ कलकत्ता लेल प्रस्थान कैलन, मुदा गामे के हिनका से एकटा पैघ विद्यार्थी अपना सने मुजफ्फरपुर पढ़वा लेल ई कहि लऽ गेलखिन जे ओते विज्ञान में नामांकन करा देथिन। हिनक अनभिज्ञताक लाभ उठा हिनक नाम कला संकाय में लिखा देलखिन। आ चिकित्सक बनवाक अभिलाषा सर्वदा लेल समाप्त भ गेलन। ओ GBB कॉलेज मुजफ्फरपुर सँ 1930 ईस्वी में IA परीक्षा पास भेला आ उच्च शिक्षा हेतु ओ कलकत्ता चल गेला। हिंदी संस्कृत सँ MA केलाक बाद 1935 ईस्वी में ओ कलकत्ता विश्वविद्यालय छोड़ देलन। डॉक्टर ए बनर्जी शास्त्री के निर्देशन में पटना विश्वविद्यालय सँ 4 बरख लेल 1936 सँ 1940 में मैथिली विषयक शोध करबाक हेतु हिनका रिसर्च स्कॉलरशिप भेटलनि। 1944 ईस्वी में सुभद्र झा पटना विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट उपाधि सँ सम्मानित भेल छला। संयोगवश 1946 ईस्वी में भाषा विज्ञानक अध्ययन करबाक हेतु पटना विश्वविद्यालय सँ 2 बरख फ्रांस में रहि पढ़बाक व्यवस्था भऽ गेलनि। पेरिस में ओ भाषा विज्ञान ओ ध्वनि विज्ञानक गहन अध्ययन कैलनि। पेरिस विश्वविद्यालय सँ ओ डॉक्टर एस लेवर्स उपाधि सँ अलंकृत भेला। एकर अतिरिक्त ओ साहित्याचार्य आ BL उपाधि सेहो प्राप्त कयने छलाह। भाषा सिखबाक प्रबल इच्छा शक्ति आ ओहि लेल समर्पण के कारण अप्रतिम प्रतिभाक धनी बनि गेला। एहन अनमोल रत्न जिनक वाणी आ लेखनी में माँ सरस्वती के वास होइत छलनि, शत शत नमन।

नमस्कार। कार्यक्रम सिंगरहार सुनिहार समस्त गोटे के स्वागतक संग हम छी माला झा। भाषा संस्कृति कला आ साहित्यक विविध विषयक संग अद्भुत प्रतिभाक धनी विभिन्न

ऐ गीतक वाद पुनः स्वागत अछि अपने लोकनि के कार्यक्रम सिंगरहार में। आई स्मरण कऽ रहल छी सुभद्र झा के, जे प्रख्यात भाषाविद छलाह। हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन सहित 14 भाषाक जानकारी टा नहीं छला। उक्त भाषा पर अधिपत्य सेहो छलैन। सबटा भाषा में हिनक कतेको मौलिक, अनुदित आ संपादित ग्रंथ प्रकाशित अप्रकाशित छन। हिनक पांडित्यक परिचय भेटित अछि द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज में, जे हिनका भाषा शास्त्री के रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दियोलकन। ई पोथी मैथिलीक भाषा तात्विक अध्ययनक दृष्टि सँ एकमात्र पोथी अछि जे मैथिली के स्वतंत्र भाषा रूप में निर्विवाद रूप सँ प्रतिस्थापित करैत अछि। हिनक दोसर प्रसिद्ध ग्रंथ अछि स्टडीज इन दी पिपलाद संहिता ऑफ अथर्ववेद। अंग्रेजी में लिखल विद्यापति विषयक हिनक प्रमुख पोथी अछि सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। पोथी में विद्यापति गीतक अंग्रेजी में अनुवाद अछि। संगहि वृहत भूमिका में हिनक विद्वताक झलक।

0: भेटत अछि। ई पोथी लेख डॉक्टर साहेब मैथिली साहित्यक संग संग विद्यापति विषयक अध्ययन के विश्वविख्यात बना देलनि। पहिल संस्करण इंग्लैंड में छपल, भारत में एकर संस्करण बाद में भेल। सुभद्र झा संपादन आ सह संपादनों किछु पोथी के केने छला, जाहि में प्रमुख अछि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित विद्यापति पदावली, खंड दू के संपादक मंडलक अध्यक्षो छला, जाहि में विद्यापतिक गीत पाठलोचन आ पाठ निर्धारण करबा में हिनक पैघ योगदान छलनि। मैथिली में सुभद्र झाक पोथी अछि प्रवास जीवन, यात्रा प्रकरण शतक, नायतक पत्रक उत्तर, विद्यापति गीत संग्रह आ मैथिली व्याकरण मीमांसा। एमे प्रवास जीवन आ यात्रा प्रकरण यात्रा वृतांत थिक। ओ उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक क्रम में विदेश में रहत त फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली समेत और ठामक यात्रा वर्णन आ ओहिठामक लोक जीवन शैलीक अनुभव लिपिबद्ध क प्रकाशित करैत छला। ओ 1950 ईस्वी में मीमांसा, 1983 में प्रकाशित भेल, जे चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में देल गेल। मैथिली भाषाक व्याकरण पर दूटा व्याख्यान थिक, जाहि में मैथिली व्याकरणक स्वतंत्र आ आदर्श रचना पद्धति पर विचार कयल गेल अछि। पत्रक शैली में लिखल हिनक पोथी नातिक पत्रक उत्तर प्रकाशित भेल। ई बेसी चर्चित एहि कारणे भेल जे एहि पर 1986 ईस्वी में हिनका साहित्य अकादमिक पुरस्कार सँ सम्मानित कयल गेल। नातिक पत्रक उत्तर लिखब प्रारंभ तखन भेल जखन डॉक्टर साहेब योगदा सत्संग कॉलेज रांची में प्रधानाचार्य छला। वास्तव में एकर प्रारंभ भेल हिनक ज्येष्ठ दोहित्र शंकरक लिखल एक पत्र सँ। ई पोथी पत्रक माध्यम सँ लिखल विविध विषयक निबंधक संग्रह थिक, जाहि में साहित्यिक समालोचना, समसामयिक घटनाक वर्णनक संग धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक विषय पर विवेचन आ व्यक्तिक प्रसंगक उल्लेख भेटैत अछि। मैथिली साहित्यक ई अनुपम निधि थिक। हुनक व्यक्तित्व आ कृतित्व पर आगा और चर्चा करब। एहि मध्य सुनी विशेष प्रस्तुति साहित्य साधक सुभद्र झा, आलेख आ वाचन स्वर छनि अमलेन्दु शेखर पाठक के।
1: साहित्य साधक नमस्कार। आई एहि श्रृंखला में साहित्य साधक डॉक्टर सुभद्र झा। मैथिलीक जाहि विशाल साहित्य महल सँ हमरा लोकनि अभिभूत होइत रहै छी, जाहि महल केर सौंदर्य ओकर विशालता हमरा लोकनिकेँ गौरवान्वित करैत रहैत अछि, तकर शिलान्यासकर्ता लोकनि में अनेकशः साहित्य साधक लोकनिकर अवदान रहलनि अछि। एहि में बहुत रास एहनो साहित्य साधक रहलाह जे कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर, महाकवि विद्यापति, मनबोध ओ चंदा झा जकाँ अपन अवदान देलनि। एहि में प्रमुख थिकाह आधुनिक मैथिली केर प्रख्यात भाषा शास्त्री डॉक्टर सुभद्र झा। मैथिली भाषा केर राष्ट्रीय स्तर पर संस्थापन में हिनको प्रमुख अवदान रहलनि। ई अपन सारस्वत साधना सँ मैथिली भाषा के तेहन निस्सन आधारशिला उपलब्ध करौलनि जे मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धि केर हेतु बनल। हिनक योगदानक जोड़ लगाएब सम्प्रति असंभव सन लगैत अछि। एहि अवदान में डॉक्टर सुभद्र झा केर सर्वप्रमुख भूमिका तो छनि है। हमरा लोकनि डॉक्टर सुभद्र झा केर ओहि वरिष्ठ छात्र मित्र केर सेहो ऋणी छी जे हिनकर नाम विज्ञान संकायक बदला कला संकाय में लिखबा देलथिन। डॉक्टर सुभद्र झा केर इच्छा छलनि जे चिकित्सक बनथी। मैट्रिक केर बाद एहि लेल सन्नद्ध सेहो भेला। विज्ञान विषय पढ़बा लेल कलकत्ता विदा भेला, मुदा एकटा वरिष्ठ छात्र

हिनका बुझौलथिन आ हुनकर बात मानि कऽ ई मुजफ्फरपुर पहुँचि गेलाह। ओ छात्र हिनकर नामांकन विज्ञान संकाय में करयबाक बात कहि कऽ मुजफ्फरपुर लऽ गेल छलथिन, मुदा नाम लिखवा देलथिन कला संकाय में। एकरे सुपरिणाम भेल जे हमरा लोकनिकें मैथिलीक प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर सुभद्र झा प्राप्त भऽ सकलाह। से तेहन भाषाविद जे मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इटैलिक सहित 14 गोट देशी विदेशी भाषा में निष्णात छलाह। डॉक्टर सुभद्र झा के जन्म भेल छलनि मधुबनी जिलाक नागदह गाम में 9 जुलाई 1909 के। पिता छलथिन कुंजी झा आ माय के नाम छलनि निरंजना देवी। पिता के मार्ग निर्देशन में प्राच्य विद्या संस्कृत सँ प्राथमिक शिक्षा आरंभ कयलनि। पछाति हिनकर नाम मधुबनी के वाटसन स्कूल में लिखाओल गेल जतय सँ मैट्रिक के परीक्षा उत्तीर्ण भेला। एकर बाद GBB कॉलेज मुजफ्फरपुर सँ अंतर स्नातक के डिग्री प्राप्त कयलनि। एकर बाद ओ कलकत्ता चल गेला जतय स्कॉटिश चर्च कॉलेज सँ 1932 में संस्कृत प्रतिष्ठा में स्नातक के उपाधि प्राप्त कयलनि। पछाति 1934 में वेद विषय के संग संस्कृत में MA आ 1935 में हिंदी में MA के डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय सँ प्राप्त कयलनि। ओहिठाम प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी सन शिक्षक के सानिध्य हिनका प्राप्त भेलनि। 1936 में बिहार संस्कृत एसोसिएशन सँ साहित्याचार्य के उपाधि सेहो डॉक्टर सुभद्र झा प्राप्त कयलनि। 1936 में पटना विश्वविद्यालय सँ रिसर्च फेलोशिप प्राप्त भेलनि। मैथिली भाषाक उद्भव ओ विकास पर केंद्रित शोध कार्य में ई सन्नद्ध भेला आ 1940 में कलकत्ता जाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के सानिध्य में शोध कार्य संपन्न कयलनि, जाहि पर हिनका डिलेट के उपाधि प्राप्त भेलनि। 1946 में हिनका पटना विश्वविद्यालय सँ रिसर्च फेलोशिप प्राप्त भेलनि आ एही अवधि में पेरिस के यात्रा कयलनि आ एहि क्रम में स्कॉटलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली आदि के परिभ्रमण सेहो कयलनि, जाहि पर यात्रा साहित्य सेहो लिखलनि। डॉक्टर सुभद्र झा के जे शोध से पछाति द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज के नाम सँ प्रकाशित भेल आ यह पोथी आधुनिक काल में मैथिली भाषा के एकटा निस्सन आधार प्रदान कयलक। यह पोथी डॉक्टर सुभद्र झा के भाषा शास्त्री के रूप में संस्थापित सेहो कयलकनि। प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर सुभद्र झा मैथिली में अपन यात्रा साहित्य प्रवास जीवन के संग यात्रा प्रकरण शतक के नाम सँ दुई गोट पोथी के सर्जन कयलनि। एकरा अतिरिक्त नातिक पत्रक उत्तर नामक पोथी सेहो लिखलनि, जाहि पर हिनका 1980 में साहित्य अकादमी के पुरस्कार प्राप्त भेलनि। मैथिली में व्याकरण मीमांसा नाम सँ सेहो पोथी प्रकाशित छनि। अंग्रेजी में मैथिली विषयक पोथी छनि द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज आ विद्यापति गीत संग्रह और सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। एकरा अतिरिक्त स्टडीज इन द पेम्पलाद संहिता ऑफ अथर्ववेद सरल संस्कृत शिक्षण विषय के पाठ्यग्रंथ सेहो ई लिखलनि। मैथिली में विद्यापति गीत संग्रह आ मैथिली वृत्त ओ परिधि नाम के पोथी हिनका संपादन में प्रकाशित भेल। एकरा अतिरिक्त प्रत्यंगिरा सूक्त, अथर्ववेद पेम्पलाद संहिता, आनंद भट्टोपाध्याय के कर्ण संहिता भाष्य, गीताक भास्कर भाष्य, महाराज महेश ठाकुर के कृति सर्वदेश वृत्तांत अथवा अकबरनामा, धर्मशास्त्रीय व्यवस्था संग्रह, शेष कृष्ण कृत प्राकृत चंद्रिका हिनकर संपादित कृति छनि। डॉक्टर सुभद्र झा अनेक पोथी के अनुवाद से

0: ओ कहलनि। अंग्रेजी में जर्मन सँ रिचार्ड पिशेल केर पोथी ए ग्रामर ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज केर अनुवाद कहलनि। एम विंटरनीज केर पोथी ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, एच विंडिश केर हिस्ट्री ऑफ संस्कृत फाइलोलॉजी, चीनी भाषा सँ लुइस द्वारा फ्रेंच में कयल गेल अनुवाद केर अभिधर्म कोश केर अंग्रेजी में अनुवाद, चीनी भाषा सँ अंग्रेजी में अनुवाद बुद्धदेव, एकरा अतिरिक्त संस्कृत में रिचार्ड पिशेल कृत प्राकृत व्याकरण, तकरा संग जर्मन केर कृति अल्तन दिशे ग्रामेटिक एकर अनुवाद कयलनि। किछु एहनो अनुवाद कयलनि जे अप्रकाशित रहि गेल। विद्वान लोकनि केर मानव छनि जे बाणभट्ट कृत कादम्बरी केर ई अनुवाद कयने छलाह। तहिना प्रसिद्ध ग्रंथ वर्ड्स केर मैथिली में अनुवाद कयलनि, कबीरक मैथिली पद केर संग्रह कयलनि, लक्ष्मीनाथ गोसाई केर पदावलीक संग्रह कयलनि, मैथिली भाषाक धातुकोश आ निरंजना शब्दकोश केर सर्जन सेहो कऽ रहल छलाह, मुदा ई सब अप्रकाशित रहि गेल। डॉक्टर सुभद्र झा आजीविका लेल अनेक ठाम रहलाह। सबसँ पहिने एम के मॉडल स्कूल कलकत्ता में 1940 में हेडमास्टर भेलाह। 1941 में सीएम कॉलेज दरभंगा में हिंदी विभाग में व्याख्याता नियुक्त कयल गेलाह। तीने बरखक बाद पटना कॉलेज में व्याख्याता हेबाक कारणे 1944 में पटना चली गेलाह। 1946 सँ 1951 धरि फेलोशिप कर क्रम में विदेश भ्रमण सेहो कयलनि। 1951 में वाराणसी गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में सेहो काज कयलनि। 1958 में जखन वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित भेल तो पुस्तकालय अध्यक्ष के संगहि व्याख्याता के रूप में सेहो कार्य कयलनि। ओहिठाम सँ 1967 में सेवानिवृत्त भऽ गेलाह। 1968 में योगदा संस्कृत कॉलेज रांची केर प्रिंसिपल भेलाह। 1977-78 में पटना विश्वविद्यालय में एक बरखक लेल रिसर्च प्रोफेसर सेहो रहलाह। 1982 में सदाशिव केंद्रीय संस्कृत विद्यालय पूरी उड़ीसा में शास्त्र चूड़ामणि योजना केर अंतर्गत सेहो रहलाह। डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकादमी, चेतना समिति, मैथिली अकादमी, संकल्प लोक आदि विभिन्न संस्था सम्मानित कऽ कऽ गौरवान्वित भेल। मैथिली भाषा केर मानकीकरण आ वर्तनी निर्धारण में सेहो डॉक्टर सुभद्र झा अपन योगदान देलनि। एहि महामानव केर महाप्रयाण 13 मई 2000 के भऽ गेलनि। एकरा संगहि सम्पन्न होइत अछि साहित्य साधक श्रृंखला केर आजुक ई कड़ी। आलेख एवं वाचन अमलेन्दु शेखर पाठक केर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद। साहित्य साधक।
1: साहित्य साधक डॉक्टर सुभद्र झा, आलेख आ वाचन स्वर छलना अमलेन्दु शेखर पाठक के। वास्तव में डॉक्टर सुभद्र झा में प्रबल इच्छा शक्ति छलन। अध्यवसाय आ अध्ययनक बल पर ओ प्राइमरी स्कूलक गुरुजी सँ कॉलेजक प्रधानाचार्य भेला। नागदह पाठशाला सँ चलि पेरिसक सर्वोच्च शिक्षाक उपाधि प्राप्त कयलनि। नातिक पत्रक उत्तर में लिखनो छथि, हमरो सन व्यक्ति जकरा मैट्रिक परीक्षा में तथा कथित मातृभाषा हिंदी में 10% अंक प्राप्त भेल से न मात्र हिंदीक उच्चतम कक्षाक अध्यापक आ परीक्षक होयबाक अवसर प्राप्त कऽ साधन क अपना जीविका टाने चलोल प्रत्युत समाज में पढ़ल लिखल व्यक्ति में परिगणित भेल। डॉक्टर साहेब नाम से प्रचलित सुभद्र झा वस्तुतः ज्ञान पिपासु छला आ विषय वस्तुक सूक्ष्मतम ज्ञान प्राप्त करबाक क्षमता हुनका में अद्भुत रहन ताहू पर से उत्साहक संग। ओ आब हमरा लोकनिक मध्य नहीं रहला, मुदा हुनक व्यक्तित्व आ कृतित्व चिर स्मरणीय रहत आ प्रेरणाक स्रोत बनल रहता। पुनः ओहि पुण्य

0: आप सुन रहे थे सिंगरहार। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है।

0: मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनी

0: चीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
2: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय की आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies driven by motto of grow more, achieve more. Addresses Indian diaspora.

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए आपको हम सुनवा रहे हैं ये पहला गाना, आशा भोसले का गाया हुआ। इसे हमने लिया है फिल्म काला पानी से। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एसडी बर्मन का है।

आशा भोसले को आप सुन रहे थे, फिल्म थी काला पानी। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म ठोकर से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार साजन दहलवी और संगीतकार श्याम जी घनश्याम जी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अब सुनिए फिल्म आओ प्यार करें का ये गाना मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार उषा खन्ना।

ये गाना आप सुन रहे थे गुलशन बाबरा का लिखा हुआ, संगीतकार थे सोनिक ओमी, युगल स्वर लता मंगेशकर और मुकेश का था तथा फिल्म का नाम था उम्र कैद। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको बता दें रात 10:30 बजे भी आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। और अब शुरू होता है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आइए इसके अंतर्गत सबसे पहले सुनते हैं मंजूर खान की गाय।

आप सुन रहे थे ये गज़ल बशीर बद्र की, जिसे गाया था उज्ज्वल कुमार ने। अब सुनिए ये रचना सुषमा झा के स्वर में।

शिप्रा कुमारी को आप सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी दरभंगा से पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंदिवर का लिखा हुआ, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, आवाज़ किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों को, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रविंद्र जैन का और फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली।

फिल्म आरजू में सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। गीत लिखा है हसरत जयपुरी का और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम को आप सुन रहे थे। फिल्म थी ताजमहल। गीत लिखा हुआ था साहिर लुधियानवी का और धुन बनाई थी रोशन ने। अब जो गाना आप सुनेंगे उसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, आवाज़ किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

और यह है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, जान निसार अख्तर का लिखा हुआ गाना, संगीत जयदेव का, आवाज़ लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे, फिल्म थी प्रेम पर्वत। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ क्षणों में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन

0: ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of grow more, achieve more." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said, "The operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defense systems in carrying out anti-terror operations.

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इसी मीटर पर कल सुबह 5:45 पर हमारी पहली सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय